0: Karsinolie.
1: Karsinolie, awansa den kari titatil.
0: Titatil, ya, nanga titatil, dati gua mekie, nanga pampis krosi poti na lampe na batra, da eleting. Da dati te eleting, teneti kang luku, wan ka adungru do, nanga dati yo kabareke ni sandas.
1: Mino deso ouro, ma unube bai ook tu titatel, ma da unube gebruik titatel gi bori faden kari chula.
0: Chula iya iya na iya de gi udu to, epati gi udu dai leting, dai go bori nanga udu nanga chula.
1: Nanga atitatel sani, no ve takatori da mi da mi denka sani, sunne walo hame ye baat ko khayal aa gaya. कि तीता तेल जब हम जाते थे खरीदने को तो उसमें एक महक होता था एक अब स्मेर वहाँ फांसी है माए
0: या स्मेरी क्या कार्सिनोली स्मेरी कार्सिनोली है लेकिन खासलीन मुरतरंग है
1: जी तो उसके लिए अपना अलग सा और लिफाफा होते थे और जो जा करके और पहले हर एक दुकान में ये तीता तेल मिल जाता था फोसी आला वेंकरी बेका बाई दोस्तों एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद फिर हम अपना जो आज का विषय है उस पे भी ध्यान देना है

0: सुनने वालों, जैसे कि आज का कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबली जी और अनुराधा जी, और अनुराधा जी के अब माइक आपके ऑन हो गया। अनुराधा जी, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? भारत के वासी हो, भारत का रहने वाले हो और भारत का कुछ संदेश तो जरूर सुनाएंगे।
1: जी नमस्कार सुनने वालों, नमस्कार मेरे भाई बहनों। आज मैं आप सबको, आप सब दिल से भारतीय हैं, अपने दिल में भारत के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, तो आज मैं आप सबको भारत की कहानी सुनाना चाहती हूँ। और आशा करती हूँ कि ये कहानी सुनकर और भारत के बारे में और जानकारी आपको प्राप्त हो और आपको भी गर्व महसूस हो कि ये हमारा देश भारत कितना महान देश है। तो संजय जी, मैं शुरुआत करती हूँ।
0: आप बिल्कुल बेफिकर और अपना संदेश हम सबको सुनाइए अनुराधा जी।
1: जी, तो हम सब भारत की कहानी जानने की उत्कंठा रखते हैं। यह एक ऐसा देश है, विविधता, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। भारत देश का इतिहास उसकी संस्कृति, धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ है। यह देश अपनी बेहतरीन संस्कृति के लिए जाना जाता है और उसकी कहानी हमेशा से उल्लेखनीय रही है। इस देश की कहानी वास्तव में एक रोमांचक यात्रा है जो हमें इस देश के इतिहास, संस्कृति और धर्म से परिचित कराती है। सुनने वालों, आपको गर्व होगा कि भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। इसके इतिहास में बहुत से महान व्यक्तियों की कहानियां हैं। भारत की इतिहास की शुरुआत प्राचीन भारत से हुई थी। प्राचीन भारत एक समृद्ध संस्कृति और धर्म का केंद्र था। संजय जी, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं चाहूंगी आप सुनने वालों को एक अच्छा सा गाना सुना दें और फिर मैं आगे कहानी, भारत की कहानी बताती हूँ।
0: जरूर अनुराधा जी, मैं एक प्लेयर पे एक गीत को खोज करके रख चुके हैं और गीत के बाद फिर हम सब जुड़ जाएंगे सभी सुनने वालों के साथ। हम पहले गीत चलाते हैं।

0: सुंदर सा गीत हम सब सुने हैं और कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया जाता है और कार्यक्रम में साथ हमारे कोलेखा अनुराधा जी जो अपना संदेश रख रहे हैं। अनुराधा जी आप आगे और वृतांत को सुनाइए।
1: जी तो हम भारत के बारे में, भारत के विषय में बात कर रहे हैं। ये महान देश, इसकी संस्कृति इतनी विशाल है, तो ये भारत के बारे में हम इसके समृद्ध इतिहास के बारे में और पता करते हैं। इस देश का इतिहास समृद्ध और विस्तृत है, जो हजारों सालों से चलता आया है। भारत का इतिहास विविधता से भरा है, जो इस देश की संस्कृति और जीवन शैली को अद्भुत बनाती है। प्राचीन रोमन और ग्रीक इतिहास से भी पहले भारत का इतिहास शुरू हुआ। हमारा भारत इतने वर्षों पुराना है कि हम रोमन और ग्रीक इतिहास भी पीछे छोड़ देता है। इसके प्रारंभ में भारत के विभिन्न हिस्सों में कई राज्य थे, जो अपनी अलग अलग संस्कृति, भाषा और राजनीति विधि के साथ विकसित हुए थे। ये है हमारी महान भारत की संस्कृति, उसका समृद्ध इतिहास। इस भारत नाम का उल्लेख भारत के इतिहास में अधिकतर धर्मों के प्रतीकों द्वारा किया गया है। वे भारत को

0: मैं बहुत कुछ अभी सबको बताना चाहती हूँ, पर क्यों ना एक गाना हो जाए और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
1: जरूर जरूर, एक गीत के बाद फिर हम सब और आगे बढ़ेंगे प्लेयर पे। फिर एक बार एक गीत को चुन करके रखे हुए है सूरीनाम वेस्ट इंडीज के कलाकारों के साथ, और उसमें से हम एक गीत को चला रहे हैं। और अभी हम सब फिर ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं और फिर और संदेश रखेंगे।

0: दोस्तों, जैसे कि अभी आपने ये सुंदर सा गीत को सुने और आगे कार्यक्रम में हमारे साथ जो हमारे कोलेखा साथी अनुराधा जी भारत का इतिहास हम सबको सुना रहे हैं, तो अनुराधा जी संदेश आगे क्या है हम सबके लिए, रखिए
1: जी। तो मैं सुनने वालों आपको इस महान भारत देश के बारे में बता रही थी कि कितनी समृद्ध उसका इतिहास है, वो भारत कितने ही

0: अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया, भारत को हम हिंदुस्तान या आर्यवर्त और भारतवर्ष जैसे नामों से बुलाते हैं। और संस्कृत भाषा में जैसे मैंने अभी बताया था कि भारत को भारतवर्ष कहा जाता है, और ये हमारी संस्कृति प्राचीन काल से, बहुत प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। मसलन आपको शायद आपने ये नाम भी ना सुने हो, पर ये नाम थे जैसे कि जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, और बाद में इसको अंग्रेजों ने इसका नाम दे दिया इंडिया। तो आपने देखा कि भारत के कितने अनेकों नाम हैं। शायद हमने तो थोड़े से ही नाम सुने। हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान, हमारा भारत महान, पर आपने जैसे सुना कि इसको हिमवर्ष भी कहा जाता है, और अजनावर्ष, और जम्बूद्वीप, ये तो मैंने भी पहली बार सुने हैं।
1: नहीं, पर ये अनुराधा जी, ये मैं पहली बार नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि अच्छा। देखिए, जैसे कि हमारे पंडित गण जो होते हैं ना, तो कोई भी कार्य करते हैं तो पहले संकल्प कराते हैं, तो संकल्प में ये जम्बूद्वीप, ये मैं कितने बार सुना है। तो हमारे संस्कृति यानी कि ये उस समय की बात है, मैं ये आज पहला बार सुन रहा हूँ कि इन नामों का मतलब, यानी कि भारत से जुड़े हुए कितने नामों हैं। तो ये मैं अब मैं समझा कि क्यों उसे जम्बूद्वीप द्वीप कहा जाता है।
0: जी जी, आप सही कह रहे हैं संजय जी, कि भारत आजकल की जो नई जनरेशन है, आजकल की युवा पीढ़ी, हम लोग ने अंग्रेजी में बड़ी जल्दी भारत को भुलाकर हम बोलते थे इंडिया, पर इंडिया का जो असली रूप है, जो उसका असली नाम भारत, उसको कितने सुंदर, अब आप देखिए भारत के कितने अनेकों नाम, जम्बू द्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनावर्ष, ये भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, वाह क्या बात है, क्या सुंदर भारत के नाम है। तो ये सुनिए सुनने वालों कि भारत के कितने भी अनेकों नाम है, पर कहते हैं ना, दिल है हिंदुस्तानी, देश हमारा एक है, देश हमारा विशाल देश है, कितना समृद्ध देश है। तो आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि भारत का नाम इतिहास में कौन कौन जुड़े हैं। तो भारत का नाम इतिहास के अनेक व्यक्तियों और ग्रंथों से उल्लेखित होता है। पौराणिक युग में भारत नाम के कई व्यक्ति हुए थे, जैसे दशरथ पुत्र भरत, भरत मुनि, राजश्री भरत, और मगध राज इंद्रधुम्न ने दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत भी हुए थे, जो अपने जीवन को आत्म विकास के लिए समर्पित करते थे। पंडापुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख भी होता है। तो आप सुनने वालों, आपने देखा कि भरत नाम के कई पौराणिक युग के बहुत ही अनेक लोग रहे हैं। भरत नाम के पीछे क्या उसकी कहानी है, देश का नाम कैसे पड़ा, तो आगे चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक जिसके अनेक पहलू हैं अलग अलग की भारत भरत नाम के कई लोग हैं। तो एक उसमें से कहानी है कि दुष्यंत पुत्र भरत, तो ये कहानी है भारत का नामकरण करने के पीछे दुष्यंत पुत्र भरत के नाम का अहम योगदान होता है। ब्राह्मण में भी भरत नाम उल्लेखित है और ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया था। इस खंड पर उसका शासन वास था इसलिए उसे भारत वर्ष कहा गया। तो सुनने वालों, तो ये मैं जो बता रही हूं ये अलग अलग कहानियां हैं जो हमारा इतिहास के भारत इतिहास के बारे में बताती हैं कि भारत जो आज का भारत है वो नाम उसका कहां से आया। तो एक तो मैंने जैसे अभी बताया दुष्यंत पुत्र भरत, तो इसी में आगे मैं बढ़ती हूं और बताती हूं आपको। जैन परंपरा में भी भारत के नाम का इतिहास मौजूद है। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भारतवर्ष का अर्थ संस्कृत में इलाका माने की बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। भारत को सबसे पुराना और सबसे अधिक धर्म संबंधी नाम भी मिला है, इसीलिए भारतवर्ष के नाम का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसका महत्व विश्व के इतिहास में भी बहुत बड़ा है। ये संजय जी आपने देखा कि हमें अपने देश के इतिहास के बारे में उसका नामकरण कैसे हुआ, हमें अनेक कहानियां, हमें अनेक इतिहास में जाने से पता चल रहा है कि क्या हमारे भारत महान भारत देश का क्या इतिहास रहा है। तो मैं आगे चलती हूँ और चलने से पहले क्यों ना
1: एक और गीत हो जाए अनुराधा जी। पर ये बात है कि ये इतना अच्छा भी लग रहा है कि इसका इतिहास हमें भी सुनने को पहला बार जो प्राप्त हो रहा है कि मत्स्य पुराण ऐसे अलग अलग पुराणों में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है ना।
0: जी जी, हमें इतिहास में कई जगह हमें भारतवर्ष भारत नाम उल्लेख हुआ है और उसी से हमें पता चलता है कि ये नाम आज का नहीं, ये पुराना बहुत बहुत बहुत साल पुराना नाम दिया गया था देश को हमारे। क्यों ना गीत सुनने के बाद मैं आगे अपने सुनने वालों को इसके बारे में और बताती हूँ, जानकारी देती हूँ।
1: जरूर, हम गीत के बाद हम जरूर इसके बारे में और सुनेंगे। पर मेरा ये है कि जैसे कि आप कह रहे हो अनुराधा जी, हमारा इस समय का जो पीएम हो वहाँ का और जो वहाँ का शासन चल रहा है तो वो भी इसके बारे में, क्योंकि गत दिनों और कुछ बड़ा कार्यक्रम जो भारत में हुआ और ऐसे होते रहते बड़े बड़े कार्यक्रम, इस बात पे भी कुछ कहा गया है कि जो नाम है और यानी कि कहने के तात्पर्य यह है कि भारत से और बुलाया जाएगा इंडिया को ना।
0: जी आपने सही कहा संजय जी, और क्योंकि इंडिया नाम तो हमारा देश है पर इंडिया तो अंग्रेजों ने हमारे देश को नाम दिया, तो ये जो हमारी भारत की सरकार है वो इस हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं कि हमें, हम नहीं चाहते कि हम अंग्रेजों के अभी भी उनके नाम, उनके दिए हुए नाम पर हमारा देश जाना जाए। तो इस पर पहल हो रही है कि हम जो उसका असली नाम है हमारे देश का, हम भारतवासी तो कहलाते हैं पर हम अपने देश को अपने ही नाम से बुलाएं तो कितना हमें गर्व महसूस होएगा। तो इसकी पहल हो चुकी है और हम भारतवासी बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नाम हमारे देश का अपना लिया जाए और ये बहुत ही गर्व की बात होगी पूरे विश्व भर में भारत वासियों के लिए कि हम अपने देश को भारत, महान भारत के, भारत तो महान है ही पर हम भारत उसको नाम दे सके।
1: आप इतने प्राउड से और यानी कि अपना जो गर्व के साथ और ये कार्यक्रम में ये संदेश भी दे रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है। दोस्तों हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे अनुराधा जी, तो गीत के बाद हम फिर अभी आपका और फिर और संदेश हम सब सुनेंगे।

0: हम फिर जुड़ गए आपके साथ। और अनुराधा जी, जरा और भी संदेश हम सबके लिए रखिए।
1: जी, तो संजय जी, हम अभी भारत के इतिहास में जाकर भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, तो इसके पीछे की क्या कहानी है, हम अपने सुनने वालों को बताना चाहेंगे। तो सुनने वालों, आगे चलते हैं। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पूर्ववंशी राजा दुष्यंत के बीच गांधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत पड़ा। ऋषि कणव ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। अधिकांश लोगों के दिमाग में भारत नाम की उत्पत्ति की यही प्रेम कथा लोकप्रिय है। आदि पर्व में आए इस प्रसंग पर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक महाकाव्य रचना, मूलतः यह प्रेमाख्यान है और माना जाता है कि इसी वजह से यह कथा लोकप्रिय हुई। तो सुनने वालों, तो ये भरत, दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, उनका नाम भरत था। तो आपने सुना कि ये जो कविता, ये जो अभिज्ञान शकुंतलम नामक जो महाकाव्य था उसमें इसी का वर्णन हुआ है। और भरत जो नाम था, जो बताया जाता है कि ये कथा है कि उनके नाम से भी भारत का नाम पड़ा हो। तो ये एक प्रेम की कहानी सुनिए, दो प्रेमियों के अमर प्रेम की कहानी इतनी महत्वपूर्ण हुई कि इस महादेश के नामकरण का निमित्त बने शकुंतला दुष्यंत पुत्र यानी महाप्रतापी भरत के बारे में अन्य बातें जानने को नहीं मिलती। इतिहास के अध्येताओं का आमतौर पर मानना है कि भरत जन इस देश में दुष्यंत पुत्र भरत से भी पहले से थे, इसलिए यह है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ना होकर जाति समूह के नाम पर प्रचलित हुआ। तो ये हमारे बहुत सारी इतिहास में आपने जैसे देखा कि कहानियां है, तो एक कहानी ये भी थी कि भारत का देश भरत के नाम से आया है। पर कहा जाता है कि देखिए, अनेक कहानियां हैं, तो अभी बहुत से इतिहास तो हमारा बहुत बड़ा है। भारत की कहानी अपनी विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ की भूमि बहुत विस्तृत है और यहाँ लोग अलग अलग भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। भारत की संस्कृति अनुभवों, संगीत, वस्तुएं और भोजन से भरी हुई है। तो ये अनेक हमारे इतिहास में कहानी थी कि भारत का नाम भारत कैसे आया। तो आपने अभी जो सुना और आपने जाना, तो आशा करती हूँ कि आपको इससे कुछ संदेश मिला और इतिहास में जाकर आपको पता चला कि भारत का नाम कहाँ से आया हो सकता है। क्योंकि एक एक कथा नहीं है, इतिहास में बहुत बहुत है। तो एक कथा ये भी थी कि हो सकता है शकुंतला और दुष्यंत के बेटे के नाम से पड़ा हो। पर बहुत हमारे इतिहास में बहुत ऋषि माने जाने, बहुत ऋषि मुनि भी रहे हैं जिनके नाम भरत रहे हैं। हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारा देश भारत, जिस देश के भारतवासी हैं, कितना सुंदर इतिहास है। हम यही कामना करते हैं कि भारत नाम हम ले पाए, और चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे हम हिंदी में बोलें या संस्कृत में बोलें, नाम भारत ही हो। कहते ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत का
0: संदेश सुनाता हूँ,
1: संदेश सुनाता हूँ। और आप तो सुना ही रहे हैं संजय जी, और ये संदेश मैं भी सुना रही हूँ। मैं भी भारतवासी हूँ, और बड़ा गर्व होता है कहकर सबको कि कितना सुंदर हमारा इतिहास है, भारत देश का इतिहास है। और पूरे विश्व भर में जो आज भारत इतनी प्रगति कर रहा है, कितना नाम हो रहा है, उससे सबका सीना गर्व से महसूस सबको होना चाहिए कि भारत नाम से जुड़ते ही कितना एक गर्व महसूस होता है। क्यों ना चलते चलते एक सुंदर सा और गीत संजय जी हो जाए।
0: जरूर, हम गीत के ओर बढ़ेंगे अनुराधा जी, पर ये बात जो आपने अभी सुनाया ना, तो इस पे हमें ख्याल आता है कि एक फिल्म बनाया गया था कि रोटी कपड़ा मकान
1: जी,
0: तो उसमें मनोज कुमार का नाम भारत था। देखिए, हम लोग अपना नाम संस्कार भी करवाते हैं ना, और नाम से जुड़ा हुआ जो जिस प्रकार के नाम रखना, उससे भी कुछ जुड़ जाते हैं। और
1: आपने
0: उसमें
1: बिल्कुल सही कहा संजय जी कि नाम का जुड़ जाते हैं, और कितना जो मनोज कुमार जी ने जो अपना उनका उन्होंने फिल्म में ये गाना डाला था, तब उसमें भारत के प्रति उनका हमेशा से बहुत प्यार प्रेम, और उन्होंने हमेशा बहुत अच्छी प्रक्रिया अपनी दी भारत के लिए, और हमेशा देशभक्ति के गीत अपनी जो उनकी पिक्चरें थी उसमें डाले।
0: उसे मुझे याद आता है कि एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू में ये कह रहा था कि जो बहुत साल पहले फिल्म क्रांति बनाया गया ना
1: जी,
0: और उन्होंने बड़े बड़े औस्तारों के साथ लेकर के और फिल्म क्रांति बनाए थे, और ऐसे भी कितना देशभक्ति फिल्म उन्होंने रखे, और जो जैसे कि शुरुआत में हम सब भी कह चुके थे, मैं भारतवासी हूँ, भारत का संदेश, भारत का गीत सुनाता हूँ, और ऐसा भी उन्होंने पूर्व और पश्चिम में इस डायलॉग का रखा था ना
1: जी जी जी,
0: और उसमें भी देशभक्ति उसमें था उस फिल्म में
1: जी जी, आप सही कह रहे हैं।
0: तो कहने के तात्पर्य यह है कि आप अपने और जो नाम होता है, नाम से जुड़ा हुआ अगर आप, क्योंकि देखा जाए कि शायद हम अपना नाम अपने इच्छा अनुसार रख दे, पर जो हमारे नाम संस्कार किया जाता है, तो उसे जो ज्योतिष होते हैं यानी कि पंडित गण होते हैं, तो जिस समय पे जिसका जन्म होता है वो किसी नक्षत्र उस समय भोगते हैं, और उस नक्षत्र के माध्यम से कौन पहर में जिसका जन्म होता है उसे वो नाम संस्कार रखा जाता है। और तो देखो कि हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारा ये जो भारत से आए 150 साल पहले सूरीनाम को गए और अन्य देशों में गए, और अभी तलक सब कुछ चीज़ें जो अभी तलक उतना अहम है
1: जी, आपने सही बात बोली संजय जी कि नाम जो चाहे वो एक इंसान का हो, चाहे एक देश का हो, और हम सब आए तो हमारा चाहे आप सूरीनाम के हो या कोई भी जो भारत से आए हुए जुड़े हुए हैं, जो चाहे अलग अलग देशों में जा बसे हैं, है तो दिल हिंदुस्तानी, दिल तो है हिंदुस्तानी
0: बस।
1: आप भले ही कहें कि आप सूरीनामी हो, पर आपका दिल भी हिंदुस्तानी है, सब सब एक हैं, क्योंकि हमारा जो हम जुड़े हुए हैं वो भारत देश से जुड़े हुए हैं, उसकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसा इतिहास, इतना ऐसे जो इतनी सुंदर संस्कृति है, जो हमें जिस पर गर्व होता है कि जिस देश का नाम भारत है, हम उससे जुड़े हुए हैं, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको उस देश से हर चीज, चाहे वो खान पान हो, चाहे उसके त्योहार, चाहे संस्कृति, सब रीति रिवाज, हम आज तक सब भारत के इतने पुराने इतिहास से जुड़े लगते हैं कि ओ, हमें गर्व महसूस होता है कि जहां पूरे दुनिया भर में कहते हैं कि हमारी कितनी सुंदर, कितनी अच्छी संस्कृति है, जो हम आज तक उस पर हम पहल कर सकते हैं। तो आपने सही बोला कि नाम के ऊपर तो नक्षत्र देखकर और नामकरण होता है। आज भी एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पंडित जी उसका नामकरण रखते हैं, और चाहे वो इंसान हो चाहे एक देश, नाम का बहुत महत्व होता है।

सुनने वालों, यहाँ तक था हमारा कार्यक्रम आज। और हमारे कार्यक्रम में सहयोग दिए अनुराधा जी और ख़ास करके बूढ़ी माता जो श्रीमती मारी जी, भी अपना संदेश श्री नाम का सुनाए।

0: सुनने वालों, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।
1: अब तो सनम
0: हमारे साथ सहयोग दिए और अनुराधा जी और बबली जी, पर बबली जी कुछ और नहीं सुना पाए क्योंकि समय हमारा ख़त्म हो गया। और सभी को हार्दिक से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को सुने। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

0: जाने।
1: सुनो लो, ये बात है कि भाई यूसुफ जी जो अपने ओर से कार्यक्रम में और सहयोग दे रहे हैं और उनके सहयोगी साथी यहाँ कितने उपस्थित हो गए हैं, शांता जी है, बबली जी है और मैं खुद भी उपस्थित हो गए हैं कुछ पुराने गाने के साथ। पर यूसुफ जी ये तो बताइए, समय चल रहा है 2024 और आप क्यों पुराने गाने के साथ उपस्थित हो?
0: पुराना गाना में और मजा है और हम वही जमाना के बात ही पुराना गाना के

0: सुनने वालों, कुछ पुराने गीतों के साथ हमारे भाई यूसुफ जी। जो हम सबके सफर की दुनिया में लेकर जाने वाले हैं। भाई यूसुफ जी, गत दिनों आप सफर में लगे हुए हैं, ऐसा क्यों?
1: सफर में अब तो यही मौका है खाई पिए घूमे के।
0: अब तो यही मौका है खाई पिए घूमे के।

0: सुने बोलो, जैसे कि हमारे भाई यूसुफ जी, यूसुफ जी के ये कहना है कि अब वो समय है खाए पीकर और घूमने को। ऐसा आपने क्यों और कह रहा है, ऐसा क्यों है भाई यूसुफ?
1: बात ऐसे है कि एक वक्त आता है कि 20-22 बरिस के बातें बिगिन कर ले काम करे के, तो ये 55-7 बरिस तब स्टॉप हो देना और फिर तनी दुनिया के खबर अभी ले लो, चलो सफर पर।
0: दुनिया की खबर भी ले लो और चलो सफर पर। ये बताइए, गत दिनों रेडियो तो यहाँ लगातार 24 घंटा चलते रहते हैं, पर गत दिनों आप कहाँ सफर करके आए यूसुफ जी?
1: अमेरिका गए रही, न्यूयॉर्क, ऑरलैंडो, मियामी, फिर बहामास एंड कैमन आइलैंड।
0: तो कैमन आइलैंड में आपको मगरमच्छ काटा नहीं?
1: जी ना, ये सब चीज मोय आइलैंड हैगा, टूरिस्टिस
0: टूरिस्टिस आइलैंड।
1: और न्यूयॉर्क से हम लोग क्रूज कर ली है 8 रोज।
0: न्यूयॉर्क से आपने क्रूज किए हैं 8 दिन तक, और ऐसा ये क्रूज के बारे में सोरा हम सबको सुनाइए।
1: या ईसाइट क्रूज जो है वो ईसाइट एन हैगा, ढेर आदमी क्रूज करे हैं, एंड हमारा यही कहना है जे कर पाए है कुछ आमदनी करो, संस्तुकीय पैराडाइज ऑफ अर्थ।
0: अति संस्तुकीय पैराडाइज ऑफ अर्थ,
1: ग्रोथ स्केप बरका है 385 मीटर, 19 verdiepingen, met we zaten met 5200 आदमी रहा बोट में पैसाशीर्स, और 2300 बमानिस लीड कैप्टन जो काम करे हैं रेस्टोरेंट में, और जो बैद खुतुत सब सफाफा करे सब चीज करे हैं। सो सात बेन सेफ हल्फ 8000 मैं सब बोट एंड यू मेरक नेक्स फन बोट चले कोना हल्फा ना कुछ।
0: इतना बड़ा जहाज होते हैं?
1: हाँ, बहुत उससे और बड़का है,
0: पर हमारे लॉयसरास जो इस समय सुन रहे, उसे आप कौन सा संदेश देना चाहते हो?
1: हम लौट के लिए है तो ढेर आदमी बैल करी से हमें कि हु वास योर रेस, हु वास इट, hoe heb je het beleefd? Ik zeg heel goed. En een paar mensen hebben gezegd dat we volgend jaar of de jaar daarop wel zoiets willen meemaken.
0: देखिए यूसुफ भाई, हम सरनाम में हमारे जन्म हुआ है और हम अपना जो जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, और लोग ज़्यादा तादाद में जब भी फकांसी होए और फुर्सत मिले तो अपने परिवार के साथ जाते हैं मिलने को। पर जैसे कि आप कहते हैं ऐसा क्रूस, वहाँ आप सिर्फ वेकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ कोई परिवार आदि मिलने का इच्छा थोड़ो है?
1: ना ना, ये है कि बोतिए में कैनस फ्रेंडशिप हो जाए, और हम लोग ना रहे हिंदुस्तानी सूरीनाम के, और रहा यूट्रेख्ट के रहा, आम्स्टरडाम के रहा, रईसवाई के एक बड़का परिवार रहा, और बोत में उतना आदमी जो रहा 30% पैसाशीर जो रहा वो हिंदुस्तानी रहा, ना सूरीनाम के, इंडिया के, मॉरिशियस के, ऑस्ट्रेलिया के, फिजी आइलैंड के, कनाडा, और 30% रहा चिनुआ में।
0: 30%
1: हिंदुस्तानी या?
0: चलो एक गीत की ओर बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ आप जो पुराने गीतों को लेकर आए हैं,

0: भाई यूसुफ जी, जो सफ़र हमारे सफ़र किंग कहलाते हैं ना, क्योंकि आप हमारे साथ और हम सबको छोड़ छोड़ करके यहाँ से और सफ़र पे रहते हैं हर बार, अगला सफ़र किस ओर आपका है?
1: वो है 3-4 हफ्ता बाद, 3-4 वीक लातर नाम से टेक ऑफ लास पाल्मास।
0: लास पाल्मास पे
1: दो हफ्ता हो इसी बिता गया।
0: और वहाँ किस कारण जा रहे हैं आप, वेकेशन या
1: मोइवेर? फकांसी से।
0: फकांसी से। सुनो लो, हमारे साथ शांता भी उपस्थित है स्टूडियो में।

सुनने वालों, हम यहाँ से भी उपस्थित हो गई हूँ, आकाश में आ गई हूँ, और स्वीकार कीजिए मेरी भी शांता की प्यार भरी राम राम नमस्कार और आदाब अर्शोवे। तो यहाँ से हम दूसरे कमरे में बैठे थे और सुन रहे थे कि हमारे अनाउंसर साथी जो हैगा योसेफ जी, वो क्रूस करके आई है। तो हाँ, जब मैं उनके तरफ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, अगर मैं भी चाहती हूँ उनके तरह जैसे वो सफ़र कर रहे, कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी लगे, हम सब के ऊपर लगे, ताकि हम भी ऐसे निढड़क होकर सफ़र करें। तो मेरे ये सवाल है योसेफ जी के तरफ, हम उनकी तरफ देख रहे हैं और उनकी तरफ ये सवाल भी भेज रही हूँ कि योसेफ जी, आपको ऐसा क्या उत्साह करी कि आप व्हाट हैव यू इंस्पिरेट दैट यू नीड द होना फकांसी दूत

0: जी सुहाना सफर और ये मौसम हंसी और सफर करके आई है। अगर आप भी सफर करे होंगे तो आप भी फोन करके बता सकते हो। पर हम चलते सुनने के लिए अब तैयार हो गए हैं बबली जी, संजय जी, योसेफ जी। तो आप लोग भी बताइए क्या क्या सफर, कहाँ कहाँ सफर आप लोग ने किए।
1: शांता जी, सफर के बात ये है कि हमें तो सफर जब चाहे, मेरा भी दिल करता है सफर करने के, पर ये अभी जो हमारे साथी जो जा करके सफर करके आए कि क्रूज करके आए हैं, तो क्रूज में एक अहम एक हम लोग तो कितने सफर किए, कहीं सऊदी अरबिया तो कहीं इंडिया तो कहीं, बस वो फ्लाइट ले और वहाँ पहुँच जाओ। पर यह है कि आप पानी में जब हो और समुंदर में हो तो उसमें एक नीदलांस वर्थ है सही सीख नहीं होते,
2: नहीं नहीं एक को पते ना लगे है बोत का है खरा है कि कहूँ रुकल है कुछ, एक को हल्पा ना कुछ हल्पा रा खौल्फ वारा ते सद सेफ आख नहीं हमेतर हो ओमन कुछ पते ना लगे भाई उतना भारी बोत है।
1: तो इसमें कौन कौन सा फैसिलिटेटर रहता है एक एक एक क्रूज शिप पे, जैसे कि स्पोर्ट आप मंगलो करे तो आप कौन सा स्पोर्ट वहाँ पर कर सकते हो?
2: ओमन हमारा वॉलीबॉल हुए ट्रेनिंग है सब करे हैं और स्वयं बात है बेबल बात है सौना है आलस से तरफ अतिसन दौर ऑफ सिक्स सेल्फ
1: अतिसन दौर ऑफ सिक्स सेल्फ। पर जैसे आपने कहा कि क्रूज में कभी कभी तो हजारों तथा एक क्रूज जो स्टार्ट होता है तो हजारों के तादाद में लोग उसमें होते हैं।
2: जी हम लोग कर ली 5,200 आदमी पासा छः साल
1: 5,200
2: एंड बमानिस ले दवार मैं तो रेस्टोरेंट हो जो पकावे कावे है और जो वीडियो दी सफा करे उस सब रहा 2,200
1: तो देखा जाए तो लगभग 7,500 ऐसे आदमी एक क्रूज में हो सकते हैं। बबली जी आप कब सफर करने वाले हैं?
3: अभी अभी मेरे को पता चला है शायद अगले साल हम लोग जाएं क्रूज करने जब बेटे की वोकेशन होगी तब।
1: शांता जी क्या आप तैयारी भी कर चुके हैं या नहीं?
0: हम तो बहुत उत्साह हो गए हैं अभी जैसे यूसुफ जी ने कहा है तो दिल मेरा बहुत सालों से कर रहे क्रूज करने के लिए। पर अगर एक ग्रुप से जाए या दो जने से जाए तो अच्छा लगता है।
1: अगर शांता जी अगर इस कार्यक्रम में लोग फोन करने को इच्छा करते हैं तो कौन सा नंबर फोन कर सकते हैं?
0: आपने कुछ अच्छा बात की, अगर फोन करना चाहे तो हम देखे मेरे नाक के सामने हैगा तो मैं आपसे बता दे कि आप अगर फोन करना चाहते हो तो जरूर से आप ये नंबर पर फोन कर सकते हैं 9712136598 पर, यानी कि एक बार हम यहाँ से दोहरा देते हैं 9712136598 पर। जी हाँ
1: जी हाँ। तो यूसुफ जी कुछ और सुनाइए अपना सफर के बारे में।
2: और कौन जी तू लोग कुछ सवाल कर तो हम जवाब दे
1: तो अब अभी आपने भी कहा सूरीनाम भी जाने वाले हैं आप
2: सितंबर में
1: है। सूरीनाम में पर आजकल तो मस्कीटा ज्यादा है ना, निकेरी में है
2: नहीं
1: आते
2: बहुत कम थी,
1: एक दूसरे को प्रेम नहीं करते मस्कीटा लोग।
0: नहीं नहीं सुनने वालों आप शायद भी सोचते होंगे कि यूसुफ जी कहते हैं कि निकेरी में है बल्कि सूरीनाम में नहीं है, हालांकि निकेरी भी सूरीनाम है, निकेरी भी सूरीनाम है, पहले बल्कि पहले के लोग निकेरी के निवासी लोग ऐसे ही कहते हैं कि निकेरी वो सब निकेरी कहते हैं और बैता निकेरी तो वो सूरीनाम है।
2: हाँ बोले मेरे को सूरीनाम
0: या
2: बोले निकेरी कहाँ तो सूरीनाम है।
1: यूसुफ भाई शायद आपको इस बात को ख्याल होगा कि पहले जब निकेरी से लोग आते थे शहर में ना यहाँ आकर के जैसे कि गए तो जैसे छोटे छोटे गांव होते थे वेलकदाख बेई बुद्धू पासी कफड़िया पासी मजिदिया पासी ऐसी इधर यानी कि शहर से ना बहुत दूर पर वहाँ पर गांव होते थे रब सब रास्ता ऐसे जैसे कि आजकल हो गया पत्थर का रास्ता वो नहीं होते थे और सब में और एक चीज अहम होता था पहले जो जा करके सभी अपने खेतों में जो धान उगाते थे ना
2: जी,
1: क्योंकि पहले ऐसे चावल हम नहीं खरीद सकते थे, पहले जो सभी अपने अपने परिवार के लिए धान खुद बोते थे। और ख़ास करके आजकल वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है कि पहले जब देखा जाए, इस बात पे शायद कुछ लोग जो 50 साल से ऊपर होंगे तो ही शायद ख्याल कर पाएंगे कि घर ऐसा बनाया जाता था, पास में गाय पोसा जाता था और घर के ऊपर एक ऐसा स्थान बनाया जाता था जहाँ पर चावल का और बस्ता रखा जाता था, धान और बखार, और उसी के नीचे लोग रहते थे। उस प्रकार का घर बनता था ना, यानी कि ऊपर में जो चावल रखा जाता था और नीचे में जा कर के लोग रहते थे और पास में गाय आदि का, और यानी कि जो कुएस्ताल आदि होते थे तो वहाँ ऐसे इस प्रकार से बनता था। पर उस रकम का घर अब कहीं नहीं दिखता है,
0: नहीं बिल्कुल नहीं,
1: हाँ। अब बिल्कुल नहीं दिखता है। और पर यह भी होता था कि वो जो ऊपर वाला भाग होते थे ना तो वो ज्यादा बड़ा नहीं होता था, लगभग उसमें 10-15 बस्ता और चावल रखते थे, धान कहते थे ना उसे,
2: पादी।
1: और समय आने पे उसे और झुरवा करके और ले जाकर हर एक गाँव में, ज्यादा तादाद में गाँवों में, और एक काबुल पैल राइस पैल मोलन हुआ करते थे, और वो अपना एक साका एक बस्ता को और ले जा करके और वहाँ पैल करवा करके फिर उसके पास चावल हो जाता था। पर ये इन द यार एंड यार सेस तक बखेन यार सेवन तक में ये बस बिल्कुल धीरे धीरे एकदम खत्म हो गया,
2: बहुत कमती हो
1: चावल
2: निकेरी में है,
1: नहीं नहीं निकेरी दतवस आलताइट अनराइज डिस्ट्रिक्ट। पर जो परमारिबो, अभी पहले तो नाम परमारिबो अब कुछ और ज्यादा बढ़ गया है और वानिका रखा गया, पहले ये नाम वानिका था ही नहीं। उस समय के बात है कि उस प्रकार का घर अब हम लोग को देखने को मिलते नहीं। दत्वासन बिसोंद्र इंजीनियरिंग, और उसमें क्या था कि चावल जो एकदम जो धान है उसे गर्म रखने के लिए ऊपर में रखा जाता था ना, ताकि वो साल भर तलक और बढ़िया रहे। कैसे बोलते थे, ऐसा है ना,
2: जैके घोड़ा रहा, गाय रहा, बकरी रहा, ऑफ कुछ ज्यादा गाय तो ओकर उ
0: पेल पेलवन जना
2: जन सेट मेल की कौन चीज हो रहा
0: सेमल
2: सेमल, हां तो उस सब उ फोर दे रहा था धानो भगो मिला तरह चौरो और इसी सेमल भी मिल जाता
0: एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा
2: जानवर लोग
0: एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फूडिंग उस सब के हो जाता रहा सेमल सेमल स्लैप मेल
1: स्लाइट मेल कहा जाता था ना
0: स्लाइट मेल
1: ऐसे ही कुछ
2: अंतर उसको नाम समान लोग सेमल बोला था रेली
0: सेमल और स्लैप मेल
2: अपना है उस सब चीज ना मिले
0: देखे अपना है कारण कि हम कैसे जानी लो हम लोग हम बाप लोग मुर्गी पोसत रहा तो और आज मुर्गी तो हम बाप जा तक खरीद के लावे तो हम लोग से हम लोग तो बच्चे रहे तो हम लोग का उपद्रा खरे सवेरे संझा के दाना देवे के पानी में बाल्टी में धर के हमें पानी और पानी में बाल्टी में स्लैप मेल या सेमल धर के तो के पानी से मैंग करके तो हम लोग जाए मुर्गी के दरबा में तो हम लोग धरी सब खाती।
1: चलो शांता जी आपने तो थोड़ा काम किए वहाँ सूरीनाम में। बबली जी ये बताइए आपने कभी अपने घर पे ऐसा काम किए कि नहीं।
3: मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, मेरे भैया वगैरह ने ये किया, अभी बड़की माई ने, हमारे घर में भी मुर्गी थी पहले तो बड़की माई करते थे और भैया करते थे, उन्होंने मुर्गी के वो दाना देना और उनका घर साफ करना सब कुछ करना।
0: ये सब जी आप कैसे था आपका बचपन आपका ये कैसे था।
2: हम लोग तो परमारी को करे ले हम लोग अब मैं बोला तदमी लोग बोली इतनी बार कहीं बताए हम वह यहाँ कहीं प्रॉब्लम है दीदे बस हम लोग कभी काम हम ना कर ले हैं ना बोले गाय के
0: प्रॉब्लम
2: जाए हर बनाए के बदरेस में काम करो बाप के
0: अंदर
2: या
0: खेत में जाओ,
1: हाँ, और
0: पेड़ पे चढ़ो,
1: हाँ, और हाथ जो कट जावे तब कुंची लगावल जाता हाथ में, मोको मोको मो और ऐसा, इन चीजों को आपने नहीं किया। बबली जी, आपने पता है कभी हाथ कटा आपका कि नहीं?
3: ना, मेरा कभी नहीं कटा, थोड़ा सा चक्कू लगा होगा लेकिन ज्यादा नहीं।
1: तो हम लोग के समय पे शांता जी कभी हम लोग गाय का घास आदि और जब काटे तो कभी हंसुआ जब पजल रहे, हाँ, तो कुछ ज्यादा ही कट जाता था और कोई डॉक्टर के पास जाता ही नहीं था।
0: ना ना, पार्टी में हम देख रहे थे, बाबूजी ने कोई टेंशन नहीं लेते, चलो चलो ठीक है, जाके मोको ऐसे काट के कर फैलवा जो है ना खुरुच के एक थोड़ा से मासी मासी करके कर रसवा जो है ना वही पे धर के भान देख ला दो रोज में। दो रोज में
1: नहीं, और घास, लेकिन घास लेकर जाना था घर पे ना।
0: और वो भी ना, पहले तमाकू,
2: तमाकू है माते बोले,
0: ब्लाकते
2: ब्लाकते वाइट हॉर्स
0: ब्लाकते पहले कहते ना, ब्लो ब्लो पाकी रहा इसे, तो उसको भी भेग भिगो कर और लगा देते थे, जहाँ जितना गहरा कटल लतरा उस पर लगा दो और दो रोज तीन रोज ऐसे प्रबंध कर दो, एकदम छुट्टी। कारण कि पहले के तमाकू और आज के तमाकू में बहुत अंतर है, पर इस साइड में बहुत सारे खेमिकालियों में उनमें सब मैंग कर है दोस्त, एक सौ नित आ रहा दे आसुबा सेल्फ हेल्प प्रोबेरम होती हुआ सेल्फ, ये एक फ्राम तो ओडिंग नहीं ना बोलिए कि ओ ये लड़कियाँ बोले रहा फाह रादियो पे तो हम जाए, नहीं नहीं नहीं, पहले के तमाकू में वो करके में दूसरा रकम था आज वाला। और बबली जी कुछ कहना चाहते हैं?
3: हाँ शांता जी, पहले की चीज़ें ज़्यादा असर करते थे, आजकल हर चीज़ में थोड़ी मिलावट है, खेमिस है, तो देरी से असर होता है।
0: हाँ, देरी से असर भी होता है और अच्छा असर करेगा ये तो मुझे पता नहीं।
3: हाँ, उसकी गारंटी भी नहीं होती।
0: तो योसेफ जी, आप ये सब चीज से वंचित रह गए?
2: हम लोग तनी सुकवार में पोसहिलीला वैसे बोली।
0: योसेफ जी, आप सुरीनाम में रहते, आपके कोई ऐसे परिवार ना था जो गांव में था या बैत पारामारी वो जहाँ पे आप जाते? सिर बोंकी और बोना यानी कि प्लटका बोंकी गोल का बोंकी,
2: हाँ
0: सर नाम में बोला प्लटका बोंकी और गोल का बोंकी बोना।

0: सुने वालों, हम कार्यक्रम जो भाई यूसुफ फाहोन वाला के साथ में जुड़े रहे, आशा ये रखता हूँ कि कार्यक्रम में कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे।
1: मैं सब सुनने वालों के, फाहोन के जितना सुनने वाले है, इति प्रेमी जान पहचान रिश्तेदार सबके शुक्र अदा करेला और धन्यवाद।

0: कार्यक्रम जो यहाँ फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से प्रस्तुत किया जा रहा है, फनकारों की दुनिया। दोस्तों सुनने वालों, यहाँ से कार्यक्रम जो प्रारंभ हो रहा है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबली आसरा जी, शांता खेमाई जी, और ख़ास करके आज हमारे साथ अनुराधा जी जो ये कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। तो अनुराधा जी, आपको हम जरूर ये कहना चाहूँगा कि अच्छे कार्य करने वाला कभी सम्मान का और भूखा नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। और ऐसा सोच लेकर आपने हम सब के साथ सहयोग दिए हैं। तो पहला आवाज जो आपके और हम सब रेडियो फाहोन द्वारा आपका और सुनेंगे, तो आप अपना इंट्रो दीजिए।
1: धन्यवाद संजय जी, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया, और मैं कुछ थोड़ा सा आप लोग के साथ कुछ सुना सकूँ, कुछ बात कर सकूँ।
0: तो हमारे साथ आप जुड़ गए हैं, और आप हम सब के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ सुनाएंगे। पर आज का कार्यक्रम में जो हम सब फनकारों की दुनिया लेकर आ रहे हैं, और उसमें ख़ास करके यश चोपड़ा के बारे में बातचीत होगा। यश चोपड़ा एक ऐसा और फनकार, ऐसा फिल्म डायरेक्टर जो हुए, बड़े बड़े पिक्चर, बड़े फिल्म बनाए। पर उस ओर बढ़ने से पहले बबली जी, आप अपना इंट्रो दीजिए, और शांता जो पैनल के पीछे बैठे हुए वो भी अपना पहले सहयोग देते हैं।
2: हाँ जी, जरूर। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: तो सुनने वालों, बबली जी भी अपना एंट्री दे चुके हैं और बबली जी के बाद में तो शांता खेमाई जी जो हमारे साथ बैठे हुए। तो शांता जी, आज फनकारों की दुनिया के ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं, हमारे सुनने वालों क्या इसके बारे में क्या एक्सपेक्ट करेंगे?
1: तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे क्या मुझे को न पता, बस आप सुनते ही रहना हमारे साथ। जैसे सुने आपने, खास व्यक्ति आई है अनुराधा जी, तो उसको भी हम साथ में मिलकर यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। पर उससे आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि हँसता हुआ चेहरा आपकी शान बताता है, मगर हंस के किया हुआ कार्य आपकी पहचान बताता है। इसी वाणी के साथ आपको हम यहाँ बहुत प्यार के साथ स्वागत कर रही हूँ, और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की भी प्यार भरी राम राम प्रणाम।
0: सुनो वालों, आप सुनते रहना यश छोपड़ा, जो जिनका जन्म पंजाब से हुए और उन्होंने जा कर के ऐसा बड़े बड़े पिक्चर हम सब के लिए बनाए, बड़े बड़े और फिल्मों जो जाने की आ फिल्म्स उन्होंने और बनाए, उसके बारे में हम सब अभी काफ़ी जानकारी सुनने वाले हैं। पर क्यों ना शांता जी, उसकी एक फिल्म का एक झलक हम सुनते हैं। फिल्म का जो वीर सारा से निकाला गया ना,
1: उनकी आवाज़ में, यश चोपड़ा जी की आवाज़ में,
0: जरूर यश चोपड़ा जी के आवाज़ में हमें, और उसका आवाज़ पहले सुनते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहना सुनने वालों।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरज़ू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर

0: वीर सारा से निकाला गया है ये फिल्म जो यश चोपड़ा जी ने बनाए, और उन्होंने जो नई खंतीन त्वेन दर्तक में जन्म हुआ और जाकर के त्वे दर्शन त्वालफ में उनका और देहांत हो गया। उन्होंने कितने बड़े बड़े फिल्मों बनाए और जाकर के, और हमारे साथ जो आज के कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, तो बबली जी यश चोपड़ा जी के क्या आप लेकर आए हैं हमारे सुनने वालों के लिए?
1: हाँ जी, यश चोपड़ा जी की जीवनी। यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को हुआ। हिंदी फिल्मों के वे प्रसिद्ध निर्देशक थे। बाद में उन्होंने कुछ अच्छी फिल्मों का निर्माण भी किया। उन्होंने अपने भाई बी आर चोपड़ा और आई एस जौहर के साथ बतौर सहायक निर्देशक फिल्म जगत में प्रवेश किया था। 1959 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म धूल का फूल बनाई थी। उसके बाद 1961 में धर्मपुत्र आई, 1965 में बनी फिल्म वक्त से उन्हें अपार शोहरत हासिल हुई। उन्हें फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। बॉलीवुड जगत से फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें 2005 में भारतीय सिनेमा के उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। यश चोपड़ा जी का जन्म 27 सितंबर 1932 लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ और उनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 2012 मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। उनका पेशा था फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता व पटकथा लेखक, और उनका कार्यकाल था 1959 से 2012 तक।

यश चोपड़ा जी की शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम था पामिला चोपड़ा और उनके दो बच्चे हैं आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा और उनके बड़े भाई का नाम है बी आर चोपड़ा। सुनने वालों, मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ यश चोपड़ा जी की जीवनी के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और कौन कौन सी फिल्में बनाई और उनके परिवार में कितने लोग थे और सारी बहुत सारी जानकारी। यश चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा का रुख ही बदल दिया। शशि कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शाहरुख खान को यश चोपड़ा अपनी ज़्यादातर फिल्मों में लेते थे। ये फिल्म स्टार उनके बहुत फेवरेट थे, उनकी हर फिल्म में ये लोग होते थे। सुनने वालों, यश चोपड़ा के फेवरेट दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान रहे और इनको लेकर यश चोपड़ा ने कई फिल्में बनाई। यश चोपड़ा की फिल्मों में रोमांटिक सीन बहुत दिलचस्प होते थे और वे अपने हीरोइनों को शिफॉन की साड़ी के साथ बारिश में भिगवाते ज़रूर थे। उनके लिए खूबसूरत लड़की का मतलब तभी होता था जब वो शिफॉन के लिबास हो और इसी लिबास में वो अपने प्रेमी के करीब आए। यश चोपड़ा के बारे में कई किस्से हैं, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। यश चोपड़ा जी की पत्नी का नाम था पामिला चोपड़ा और वह अपनी पत्नी का गाना फिल्म में ज़रूर रखते थे क्योंकि उनकी पत्नी को गाने का बहुत शौक़ था और चांदनी फिल्म में आपने उसका गाना ज़रूर सुना होगा। और उनके बेटे थे आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा और उनके बड़े भाई थे बी आर चोपड़ा। यश चोपड़ा के पिता लाल विलायती राज चोपड़ा ब्रिटिश पंजाब एडमिशन में पीवीडी अकाउंट थे और पूरे परिवार के साथ जलंधर में रहते थे। यश चोपड़ा 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके सबसे बड़े भाई बी आर चोपड़ा इनसे 18 साल बड़े थे और वह हिंदी सिनेमा के पॉपुलर फिल्म मेकर थे। सुनने वालों, आपको पता होगा कि बी आर चोपड़ा जी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी। वो ज़्यादातर समाज के ऊपर फिल्में बनाते थे। उन्होंने वक्त फिल्म बनाई और माँ भारत सीरियल बनाया है और निकाह फिल्म जो कि एक मुस्लिम फिल्म थी और उसमें दिखाया कि औरत को कैसे आदमी लोग तलाक दे देते हैं, वो उसके ऊपर थे। और एक उन्होंने फिल्म बनाई थी इंसाफ का तराजू, जीनत अमान और राज बब्बर को लेकर और पद्मिनी कोल्हापुरी, वो भी उन्होंने औरत के ऊपर बनाई थी। यश चोपड़ा की शुरुआती पढ़ाई से ग्रेजुएशन जब जलंधर से हुआ लेकिन इंजीनियर की पढ़ाई इन्होंने लुधियाना से की थी। चोपड़ा और जौहर का रिश्ता इनके बी आर चोपड़ा और करण जौहर के दादा आई एस जौहर से चला आ रहा है। यश चोपड़ा के घर वाले उन्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब करते देखना चाहते थे लेकिन उनका मन भाई के साथ फिल्मों में लगता था। इनके पिता इनके लिए तैयार नहीं थे तो माँ ने इन्हें मुंबई इनके भाई बी आर चोपड़ा के पास भेज दिया।

उनके भाई बीआर चोपड़ा ने निर्मित किया था। यश चोपड़ा ने अपने भाई के प्रोडक्शन में धर्मपुत्र, इत्तेफाक, वक्त, आदमी और इंसान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। इस दौरान उन्हें एक सफल निर्देशक का खिताब मिल चुका था, लेकिन यश जी को कुछ अपना चाहिए था।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुनी और नेहती नेहन 50 से, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े फिल्मों को रखे, ये बड़े फिल्मों बनाए, पर उसमें से जब देखा जाए कौन सा फिल्म जो बनाए उन्होंने और हम सब, क्या उसका नाम आपको पता है कि कुछ मशहूर फिल्म है?
1: सुनने वालों, यश राज जी की मशहूर फिल्में हैं दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, सिलसिला, मशाल, फासले, फिर दोहराया 90 का, और यश चोपड़ा कई अनुभव पाना चाहते थे। सुनने वालों, यश राज जी जब फिल्मों में आए तो वो हीरो बनना चाहते थे, और जो हीरो न बन सके तो फिर उन्होंने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई और काम किया जाए। तो उन्होंने अपने भाई के साथ काम किया, फिर वहाँ भी उनका कुछ और पाने की तमन्ना थी, तो साल 1971 में उन्होंने अपना बैनर बनाया और अपने बैनर की शुरुआत की, और जिसका नाम रखा यश राज फिल्म्स, और अपना प्रोडक्शन उन्होंने खोला। तो फिर उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की, जिसमें उनकी सबसे पहली फिल्म थी दाग, और यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई, और इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ये मुख्य भूमिकाओं में थे, और इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यश चोपड़ा हमेशा अपने दौर से 5 साल आगे का सिनेमा देखते थे, तभी उनकी फिल्मों में चीज़ें नज़र आती थी, खासकर उनके निर्देशक में बनी फिल्म जिसमें वे दो चीज़ें महत्वपूर्ण समझते थे, एक फिल्म का लोकेशन और दूसरा फिल्म की हीरोइन। बाकी कहानी थोड़ी कम भी हो तो चल जाता था। स्विट्जरलैंड को यश चोपड़ा ने इतने अच्छे से अपनी फिल्मों में दिखाया कि वहाँ का पर्यटन काफ़ी अच्छा हो गया। बाद में वहाँ की सरकार ने 25 अक्टूबर 2010 में यश जी को एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन अवार्ड से नवाजा था। सुनने वालों, स्विट्जरलैंड की सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया। इतना ही नहीं, उनके नाम से एक सड़क भी वहाँ है और एक ट्रेन भी चलाई गई है गई थी। सुनने वालों, मेरे को भी आज पता चला, देखो, कि उनके नाम से स्विट्जरलैंड में एक सड़क भी है और एक ट्रेन भी चलती है।
0: कि उस समय जब ये फिल्म निकलते थे ना, तो पहला चीज की फिल्म थिएटर के आगे बड़ा पोस्टर बनाया जाता था, बड़े पोस्टर बनाया जाता था। अभी तक तो इंडिया में ऐसा होता है
2: जी, अभी भी होता है, पोस्टर बहुत बनता है, और अमिताभ बच्चन के घर के सामने तो लोगों की भीड़ हर रविवार को।

0: हर संडे की दिन उनके चाहने वालों की तो भीड़ लगी जाती है।
1: तो अभी तो आप कह रहे हैं कि संडे को हमारा फ्लाइट तो मंगलवार को जाना है और बृहस्पतिवार को वापसी है, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। पर दोस्तों ये बात है कि ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के और जा करके जो मिलना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि अभी अनुराधा जी ने ये संदेश में रख भी दिया कि अमिताभ बच्चन जैसे कि हर रविवार को और अपने फैंस को लिए और निकलते हैं, खास करके फैंस के लिए ना
0: जी।

0: जो सुनते नहीं हो दिलों के दुहाई, शांता जी जो सुनते नहीं हो दिलों के दुआई, और दुआई के अंतर्गत जो हम आज का विषय कलाकारों जो हमारे लिए अपने ओर से अपने कला से इतना बड़े बड़े फिल्म बना करके और छोड़ करके चले गए हैं आज, तो बबली जी और क्या संदेश है?
1: सुनने वालों, यश चोपड़ा जी चांदनी फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उनको कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी, तो वो सोच रहे थे मैं किसको फिल्म में लूँ, क्योंकि उनकी दो फिल्में पहले फ्लॉप हो चुकी थी, कभी कभी और सिलसिला, और इसी कारण उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। और इसी दौर में यश चोपड़ा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उस समय श्री देवी जी ने उनका साथ दिया और बिना फीस मांगे फिल्म में काम करने को तैयार हुई। फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद श्री देवी जी ने उनकी फिल्म लम्हे में भी काम किया और वह यश चोपड़ा जी की फेवरेट एक्ट्रेस बन गई। यश चोपड़ा के दिल के करीब शाहरुख खान थे और वह शाहरुख खान को अपना बेटा मानते थे। शाहरुख खान को रोमांस करना यश जी ने ही सिखाया। इनके निर्देशन में शाहरुख खान ने डर, दिल तो पागल है, वीर जारा और जब तक है जान की। साल 2012 में यश चोपड़ा ने अपनी मौत से ठीक एक महीने पहले शाहरुख खान को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि फिल्म जब तक है जान के रिलीज़ के बाद वे रिटायरमेंट ले लेंगे और अपना सारा समय परिवार को देंगे, जिस बात पर शाहरुख खान इमोशनल हो गए थे। यश चोपड़ा को अक्टूबर में डेंगू बीमारी हो गई और 21 अक्टूबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और 13 नवंबर को बेहद शांति के साथ उनकी फिल्म जब तक है जान रिलीज़ की गई थी। यश चोपड़ा जी के निधन पर पूरा बॉलीवुड गमगीन हो गया था और रोमांस का किंग कहे जाने वाले यश चोपड़ा के निधन पर हर कोई रोया था, खासकर शाहरुख खान को इसका बहुत बड़ा धक्का लगा था और उन्होंने मीडिया में यह कहा था कि उन्होंने एक बार फिर अपने पिता को खो दिया। साल 2001 में यश चोपड़ा को भारत के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद 2005 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। सुनने वालों, ये दोनों जो अवार्ड हैं ये भारत के सबसे ऊंचे अवार्ड माने गए हैं, दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, सुनने वालों, ये जब सिनेमा की शुरुआत हुई, बॉलीवुड में फिल्म बनने शुरू हुई, तो दादा साहब फाल्के जी ने सिनेमा की शुरुआत की फिल्में बनाने की और उन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के अवार्ड की भी शुरुआत हुई। उन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: और इसी प्रकार से वीर सारा को बनाया गया। उसमें खास करके सभी और लता जी भी अपना आवाज दिए और सभी कुछ यंग सिंगर्स ने सोनू निगम आदि और जाकर के अपने आवाज दिए ना
1: जी। वीर ज़ारा जो कि 2004 में बनी और देखिए ये अभी 2023 वर्ष चल रहा है तो 20 साल होने को आए, 19 साल अभी तक। वीर ज़ारा का नाम लेते ही हमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी का जो किरदार उन्होंने लॉयर का किरदार निभाया, आज तक उस पिक्चर के संगीत को याद करके और एक यादगार फिल्म जी उन्होंने बनाई।
0: आप कह रहे हो, मेरा सामने वो भी और चित्र आ रहे हैं कि बिल्कुल एक बिसुंदर फिल्म जिन्होंने बनाया। तो शांता जी, मैं देख रहा हूँ पिटारा से कुछ और निकलने वाले हैं।

तो ये फिल्म लम्हे से हम सब निकालने वाले हैं, ये गीत जो हमारे और शांता जी जो पिटारा से भर के लाए हैं,

सुनने वालों, यहाँ तक था कार्यक्रम फनकारों की दुनिया, जिसमें संदेश रखा गया। आज का संदेश में हमारे मशहूर, हमारे जो बड़े प्रोडक्शन वाला यशराज जी, उसके अंतर्गत में कुछ संदेश रखा गया। आशा यह रखता हूँ कि जरूर कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। हमारे साथ सहयोग दिए अनुराधा जी, बबली आसरा जी और शांता खेमाई जी। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और फिर मिलेंगे।

0: खेतवा के पीछे रहती थी नानी, रोज रोज गगरिया में भर लाती थी पानी। एक रोज मुझे नानी से मुलाकात हुई, मैंने नानी से मांगा एक गिलास पानी, नानी मुझे छुटकार दिया।
1: क्या कहते हो मोर बच्चा?
0: हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, हमारे घरे शादी पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज।

कदहा के कार पर टोयोटा कार देखो इम्पाला कार देखो संग में नाचो रे यार हमारे घर शादी पर उसने भाई नाराज न होइए हमारे घर शादी

से मीनी को तो होइगे तीन खेलो सब आज हमारे घर कारज परोसिन भाई नाराज न होइए हमारे घर शादी परोसिन भाई नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न होइए हमारे घर शादी।

भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने विचारों के आदि हैं, गुलाम हैं, हम कुछ भी बदल नहीं सकते। यदि हम अपनी सोच नहीं बदल सकते, अपना जीवन बदलने के लिए अपना मन, अपनी अंतर्दृष्टि बदलें। यदि चश्मा लगाने से हमारी दृष्टि में सुधार होता है मित्रों, तो मन में बदलाव से हमारा जीवन भी बेहतर होगा। और केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं, कोई और आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता है। मित्रों, इसके बारे में आप सोचें।

जीवन छोटा और क्षण भंगुर है। अपने जीवन काल में इस प्रकार आचरण करें कि वर्तमान में आपके लिए सुगंधित वातावरण निर्मित हो और भविष्य में मृत्यु के समय आप अनुकूलता पूर्वक स्वयं ही संसार छोड़ दें। आप मृत्यु के क्षण में ही संसार का सुख छोड़ देते हैं मित्रों, यही आपके जीवन की सफलता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो परिवार में धन दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति की गंध छोड़ते हैं। जीवन में पद के चाहत भाग्य में नहीं होती, जीवन की खुशी जंगलीपन और स्थिति में नहीं है, बल्कि आत्मा की पवित्रता में है।

मित्रों, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया? पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना। सब कुछ यही रह जाएगा, सिर्फ तुम नहीं रहोगे। क्या छोड़ कर जाना है? इज्जत, इज्जत और ये कमाना है। मित्रों, इस गीत के माध्यम से

प्रिय दोस्तों, भगवान ने हमें दोस्त क्यों दिए हैं? ईश्वर जानता था कि हर किसी को मित्रता और प्रसन्नता की आवश्यकता होगी। वे जानता था कि मनुष्य को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जिसके विचारों पर वो भरोसा कर सके। वो जानता था कि आदमी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो दयालु हो, मदद के लिए हाथ बढ़ाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की देखभाल करने और समझने के लिए समय निकालना पसंद करता हो। ईश्वर जानता था मित्रों कि हम सभी को खुशी की भावनाओं को साझा करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। जब मुसीबत हमारे सामने आएगी तो प्रोत्साहन का स्रोत बनने के लिए किसी की जरूरत होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार हो, एक दूसरे से दूरी की परवाह किए बिना, कोई है जिसका प्यार हमेशा रहेगा और हमारे या मेरे दिल में रहेगा।

प्रिय दोस्तों, किसी का भला करना भगवान के बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जैसा है। हो सकता है कि आप ब्याज की गणना करने में सक्षम ना हो, लेकिन भगवान कर सकता है। और जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो वह इसे आपको लौटा देगा। इस पर विश्वास करता है? आप करते हो? तो फिर आपने दूसरों का भला करना क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उस व्यक्ति से आपको किसी भी रूप से कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए तुम्हें ये मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन किसी अन्य अदृश्य या लोग से। अच्छाई करो तो कहीं ना कहीं से आपको फिर वापस मिलेंगे। मित्रों, इस पे ध्यान से देखरेख करना, ध्यान करना मित्रों।

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

सुनने वालों की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय। और सुबह हो निकले है तो हम आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी को शुभ प्रभात कहते हुए हार्दिक से अभिनंदन किया जाता है और कहा जाता है कि आज का एक दिन आप एक शुभ दिन हुए। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए।

ईश्वर आपके हमेशा खुश रखे। स्वस्थ रखे और मस्त रखे। सभी दुखों से यही कामना है मेरा भगवान से। जिनका जन्मदिन है उसे बहुत सा बधाइयां दिया जाता है। जिस परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लिया है तो उन्हें बहुत बहुत बधाई दिया जाता है। जो अभी निकलने वाले हैं नौकरी की ओर, उन्हें और शुभकामनाएं। और ये मत भूलना, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ये मत भूलना कि उन्होंने इस बात का संदेश रखे थे कि ये मत सोच कि देश तुम्हारे लिए क्या करते हैं, ये सोच कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। जो सफर पे जा रहे हैं तो उनसे कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना अपना अड्डे पे। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो ये तो आपको पता है, माँ सरस्वती को भूलना मत, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान देने वाले माँ सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और जो हमारे देश में सफर करने को यानी कि वेकेशन से आए हैं तो उन्हें हार्दिक से स्वागत किया जाता है। सभी मेंबर्स जो है फाहोन रेडियो को हार्दिक से अभिनंदन। मैं जो आपके साथ जुड़ गए हैं और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे,

ऐसी लागी लगन। मीरा जो महलों में पली पर बनके निकली जोगी, आपका एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। कहते कि कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है, कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और इसमें यह भी जोड़ा जाता है कि धैर्य, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठा आते हैं।

हॉलैंड से और डेनहाग से ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

के हर एक प्रांत में इंटरनेट द्वारा सुना जा सकता है, जो इस समय अपने गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो उन्हें भी गुड मॉर्निंग। और यह कहना चाहूंगा कि जहां विश्वास है वहां प्रभु का वास है।

और इस बात के साथ में लेकर निकलिए। जिस प्रकार से अनूप जलोटा जी ने अपने आवास में रखे हैं, कीमत कर अभिमान, मत कर अभिमान।

मत कर तू अभिमान। अनूप जलोता जी की आवाज में हम सब सुने सुने वालों, इसी प्रकार से और भी सुंदर सुंदर भजनों के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं।

ये बात हम जानते हैं कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। क्योंकि परिवर्तन संसार के नियम हैं।

प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सुनने वालों, इस बात पे हम थोड़ा से जब गौर करें तो अनूप जलोटा जी ने इतना सुंदर रूप से हमें ये संदेश रखे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चंदन और पानी मिलेगा तभी आप टीका और तिलक लगा पाएंगे। क्योंकि वो उसका मिलाप से जा कर के हम तिलक और टीका लगा पाएंगे। और तिलक और टीका का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि क्या आप कहीं सत्संग से आ रहे हैं। जैसे कि श्री तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि रामायण में श्री राम जी रघुकुल का तिलक कहलाए हैं। श्री राम जी जो रघुकुल का तिलक कहलाए हैं, उस पे जरूर गौर करना। तुम चंदन मैं पानी, सुनने वालों इसी प्रकार से अनूप जलोटा का और जो सॉन्ग भजन कलेक्शन, एक और गीत, एक और भजन जो अनूप जलोटा के हम रखने वाले हैं।

बोल पिंजरे के तोता राम। अनूप जलोता जी की आवाज में

सुनने वालों, कहते हैं कि दिल से लिखी बातें, दिल से लिखी बातें दिल को छू जाते हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोग से मिलकर जिंदगी बदल जाते हैं। सभी को शुभ प्रभात कहते हुए आपका एक मंगलमय दिवस।

अनूप जलोता जी की आवाज़ में हम सब सुने ये सुंदर सा भजन, उनके आवाज़ में। हम अभी न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ने वाले हैं।

बेटे की दूध दही छाछ माखन घी सबके एक ही कुल के हो कर भी। दूध दही छाछ माखन घी सब एक ही कुल के होकर भी सबके समीप अलग अलग होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सृष्टा जन्म से नहीं, सृष्टा जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपने कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है।

दुनिया के हर एक प्रांतों में सुना जा सकता है। और अगर रेडियो से कुछ कार्य करवाना है, क्योंकि हम तैयार हैं आपके लिए, अगर आपको कुछ भी कार्य करवाना है, हमारे सभी साथियों इसी प्रकार से अपना सहयोग देते आए हैं। हमारे सभापति जो ऐसा भार अपने ऊपर और हम सबके लिए तैयार हुए कि इतना कार्य को कर सके। अगर कुछ भी आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा करवाना है, तो यह कतार का नंबर है 0 2 1 3 6 5 9 8, और दूसरा तार का नंबर है 0 3 6 5 2 2 4 7। और हम अपने जीवन में कुछ कर बैठे, क्योंकि हम आए हैं तो हमें एक ना एक दिन फिर वापसी है। और यहाँ एक सुंदर सा गीत हम चुन करके रखे हैं कि मेरी कर्म माता

रूप थोड़ा से बदल देता हूँ। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। और एक फिल्म जो हम शायद सभी देखे होंगे, फिल्म कुली से निकाला गया ये गीत, सारी दुनिया के बोझ हम उठाते हैं।

सुनने वालों, इस गीत को मैं इस कारण रखा कि कहीं गलती से आप सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पे ना धर ले। क्योंकि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यही के यही रह जाते हैं। क्या यही मेरा जिंदगी है? क्या यही हमारा जीवन है? कुछ ख्याल अपने यारों पे, एक फिल्म याराना जो बनाया गया नई खती नई न तख्त

फिल्म याराना से। कभी इस बात पे ख्याल रखे, कभी आज इस बात पे ख्याल रखते कि जो पहले हमारे साथ होते थे प्रिय दोस्त, जो शायद आज आपके साथ नहीं है, पर वो यादगार बनकर साथ साथ है। क्योंकि कहा जाता है हमारे कुछ नहीं बचता, बस वही हमारे कर्म का यादगार के रूप में।

पर हमारे दिमाग में जो दो घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक जिनका नाम पॉजिटिव है और दूजा का नाम नेगेटिव। कौन घोड़े को आप ज्यादा खुराक देंगे उसी ओर के बढ़ेंगे।

अपने तो अपने होते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से और कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से।

सभी को एक सुप्रभात। सूर्य को किरणों जो निकल चुके, मत भूलना सूर्य नमस्कार। और मैं हूं संजय, आपके साथ जुड़े हूं

कहते कि जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्ते में शुगर की बीमारी नहीं होती है। जो अभी चून किए हैं फाहन रेडियो, तो आपको भी हार्दिक से अभिनंदन किया जाता है और एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है।

और जैसे कि कहा गया कि जी भर के मीठा बोलिए। जनाब रिश्ते में शुगर की बीमारी नहीं होती है, तो अपने वाणी का मिठास डालिए। अगले गीत जो हमने चुनकर रखे हैं कि तेरी मिट्टी

सुनने वालों, यहाँ तक था हमारे हिस्से के कार्यक्रम। आशा यह रखता हूँ कि आपके साथ जुड़े रहे और कुछ न कुछ आपको अच्छा लगे होंगे। और कहता हूँ कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

सुंदर गीत जो हम यहाँ मिलकर और श्रवण की है फिल्म क्रांति से निकाला गया है। जी मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, आप जरा गौर से सुने मेरे साथ, जाने कि ढंग से बात करना कि आपके बात में कोई गाली ना हो। जो लोग बात बात पे गाली दे देते हैं ना, हाँ जो लोग बात बात पर गाली देते हैं, जो कहते हैं हम गाली किसी को हर्ट करने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, हाँ मजाक मजाक में लोग भी गाली देते हैं और कहते हैं हम किसी को हर्ट करने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, बस हमारे मुंह से निकल जाते हैं, हाँ हमारे मुंह से निकल जाते हैं, पर निकालते वक्त आपको तो ये मालूम होता है ये कि आप गाली दे रहे हैं, तो आपको बता दे या फिर कूल लगता है कहते भी कि या फिर कूल लगता है गाली देने में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एक्चुअली आप गाली देकर किसी और को हर्ट यानी कि दुखी नहीं कर रहे हो, बल्कि आप खुद के जीवन के ऐसे चार महत्वपूर्ण ग्रहों को खराब कर रहे हो। अगर आप मजाक में या कैसे भी आप गाली देते हो, आपकी जुबान से गाली निकलते हैं, तो आप अपने खुद के चार महत्वपूर्ण ग्रहों को खराब कर रहे हो। और जिनके बिगड़ना यानी कि आपके जीवन से खुशियां का नाराज होकर चले जाना है, हाँ वो ग्रह जो बिगड़ जाए तो आपके जीवन से खुशियां चला जाता है। और वो कौन सा चार ग्रह है जो बिगड़ने से खराब होता है आपका जीवन, अगर आप यानी कि भी गलती से या खुशी से मजाक में गाली देते हो, तो सबसे पहला है चलते सुनने के लिए, सबसे पहला हमारा न्याय के देवता, वो कोई और नहीं है, हमारा न्याय के देवता ग्रह में है, ग्रहों में ग्रह, वो है शनिदेव। शनिदेव की जिनका खराब होना आपके जीवन से कभी भी परिश्रम, कभी भी परिश्रम को, स्ट्रगल्स को कम नहीं होने ही देगा। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम रहेगा वो उसको प्रॉब्लम सहल नहीं करेगा, बल्कि उसमें और आ जाएगा। तो पहला जो है, पहला सबसे ग्रह है जो न्याय देवता है शनिदेव, जिनका खराब होना आपके जीवन से कभी भी परिश्रम को, स्ट्रगल जो कम नहीं होने ही देगा। और दूसरा है वाणी के देवता। जी हाँ, वाणी के देवता जो आप बात करते हैं और हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से मैं बात करती हूँ और आप वहाँ पर सुनते हैं, दूसरा वाणी के देवता बुध, जिनका खराब होना सीधा सीधा आपके बुद्धि पर वार करेगी। तीसरा है शुक्र, जिसका खराब होना आपके सीधा सीधा आपके वॉलेट लक को ही छीन लेगा, वॉलेट यानी कि पर्स, पोर्टमोनी। तो ये था तीसरा यानी कि शुक्र, जिसका खराब होना आपसे सीधा सीधा आपके वॉलेट लक को ही छीन लेगा। और चौथा है जुपिटर, जिसका खराब होना आपके, जिनका खराब होना आपके ऊपर से, जिनका
का खराब होना आपके ऊपर से साक्षात भगवान के कृपा को ही छीन लेगा। चौथा है, चौथा जो हमने कहा, चौथा है जुपिटर, जिसका खराब होना आपके ऊपर से साक्षात भगवान की कृपा, भगवान कृपा ही छीन लेगा। और जिनके बिना इस भवसागर से कभी पार नहीं उतर पाओगे, तो यहाँ से आपको मेरे लिए भी ये चेतावनी है कि गलती से भी जुबां पे किसी को मजाक में भी गाली मत दो।

जी हाँ, ये सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए अब आपका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से चला दिया गया है। हम आपको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आप जो आप दिल लगाकर और रेडियो के करीब है, रेडियो को सुन रहे, फॉलो कर रहे, द एनिग एख्त फोन हिंदुस्तानी रेडियो इन दिन।

फिल्म का नाम श्री 420 1955 के पिक्चराइज किया फिल्म है और मुकेश जी की आवाज में मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी और दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। देखो ना, जूता पहनते हैं जापान के, पतलून है इंग्लिस्तानी इंग्लैंड के, सिर पर है टोपी रूसलैंड के, अंदर के दिल जो है वो है हिंदुस्तानी। Als 's morgens het licht door de gordijnen dringt, smelten de laatste dromen. Er klinken geluiden uit de achtertuinen. Een buurman stapelt stenen, een rammelende kettingkast. Het is vandaag de eerste dag. Het is vandaag de eerste dag om met iets te beginnen. Het is vandaag de eerste dag om met iets te beginnen waar niemand aan begon. Wat u eerder niet gedaan hebt en u begint dan vandaag of het moment en dan is dat de eerste dag. अक्सर हम सुनते हैं जो कभी कुछ नहीं किया होगा या एक शहर से दूसरा शहर नहीं गया होगा तो कहते हैं, और जाएगा तो कहते कि पहली बार हमने गई है, पहली बार हमने ये पी है, पहली बार हमने ये शब्द सुने हैं, तो वो पहला हो जाता है। कभी रात दिन हम दूर

आई लव यू प्यार करू छू, जाला माला प्रेम चाला, ये तीन शब्द में प्यार का इजहार किया गया है कि आई लव यू प्यार करू छू, जाला माला प्रेम चाला। फिल्म का नाम महासंग्राम 1993 में ये पिक्चराइज किया गया है और इसमें स्टार कास्ट है माधुरी दीक्षित, विनोद खन्ना, शक्ति कपूर और संगीतकार जो आपने सुने अलका याग्निक जी। अनस्प्रेकवोर्ड दिसेख्त गिस्त्रन इस फोरबाई मोर्गन इस अ मिस्ट्री, मार फंदाग Vandaag is een geschenk. En dit heet het heden. Dus met andere woorden, leef, lach en zing. Maar wees vooral gelukkig.

जीना भी क्या है जीना, तेरे होठों के बिना, तेरे आंखों के बिना। फिल्म का नाम कसम पैदा करने वाले की, कसम पैदा करने वाले की। म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर खुद बप्पी लहरी है और साथ दे रहे थे सलमा आगा।

झार के। माय गॉड, नेरुला नेरुला जसपिंदर नेरुला और सोनू निगम की आवाज में थोड़ा भोजपुरिया शब्द इसमें भी थे। फिल्म का नाम सन्यासी मेरा नाम, इसलिए आप जा झाड़ के। द एनिग एक्ट रेडियो स्टेशन फाहोन रेडियो।

0: भोर भय पन घट पर लता जी के लाइव अवतरित यहाँ से आपके लिए पेश किया गया। मेरी आवाज के सुनने वालों, आपको यहाँ से रफी जी की आवाज में।
1: इसके बाद मैं फिर एक बार कृष्णा मुखर्जी से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आ जाएं। और अब पेश खिदमत है एक दो गाना जिसकी फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। गाने के बोल हैं, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, वगैरह वगैरह। लीजिए, मुलायजा कीजिए।

0: कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा, सदियों तक रहेगा। ये रफी जी के प्यार जो है, हाँ, कई पीढ़ियों तक ये जरूर से आबाद रहेगा, आबाद रहेगा। आपके लिए पेश किया जाता है रफी लता के लाइव परफॉर्मेंस। कहते कि हमसे दूर जा पाओगे कैसे, हमसे दूर जा पाओगे कैसे मेरे दोस्तों, दिल से हमको भुला पाओगे कैसे। हम तो वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे आप कैसे, ये तो बता।
1: मैं ये कहूँगी कि हमारे जो पुराने कुछ स्टार्स थे उनके लिए गाने में मुझे भी बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मैं जानती थी इसके ऊपर जो एक्टिंग होगी वो बहुत सही होगी। उसमें से एक जया जी हैं।

ये कॉन्सर्ट दिया गया है 1997 में। अजीब दास्ता है ये लता जी के आवाज में। द बेस्ट म्यूजिक ऑफ यू फेवरेट फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। दुनिया उसी को सलाम करते हैं, दुनिया उसी को सलाम करते हैं जो अपने लक्ष्य को प्रणाम करते हैं। और जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की हर रचना सर्व उत्तम है। ईश्वर की हर रचना सर्व उत्तम है। एलक पर्सन इज यूनिक।

फिल्म का नाम लव इन शिमला। फिल्म का नाम लव इन शिमला 1960 के ये पिक्चराइज किया गया फिल्म है। रफी जी की आवाज में यहाँ से हमने मिलकर श्रवण किए कि दिल थाम चले हम। कहते हैं कि बहुत नन्ही सी परिभाषा है प्रेम की, बहुत नन्ही सी परिभाषा है प्रेम की, मैं शब्द तू अर्थ तुम बिन मैं व्यर्थ। जिंदगी है तो जी ले, जिंदगी है तो जी लो, वरना गुजर जाएगी। जिंदगी है तो जी लो वरना गुजर जाएगी, ये जिंदगी है जीना सीखिए। ये जिंदगी है जो जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। जिंदगी है तो जी लो वरना गुजर जाएगी। जिंदगी की कहानी बस इतनी से है, जिंदगी की कहानी बस इतनी से है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है, कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। जिंदगी है तो जी लो, जिंदगी है तो जी लो वरना गुजर जाएगी।

0: नए नए बरसे और साथ में आएगा लता जी के मधुर आवाज में आपके लिए पेश किया गया है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं, कहाँ पर लेकर चलते हैं? हाँ, फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुनेंगे हम कि प्यार क्या है, लव क्या है। LOVE उसका मतलब क्या, जरा हम सुने मिलकर।
1: LOVE

जिसको LOV नहीं आता है वो कहते हैं कि वो बोरिंग है, बोरिंग है, पर ऐसा नहीं है। प्यार, प्यार से तो आप है, प्यार से तो हम है, प्यार से ये सारा संसार है ना। और कहते हैं कि जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, आप सुनिए जरूर से, इसे थोड़ा गौर से सुनिए, कि जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता है वो दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनने की कोशिश करते हैं। जी मेरे दोस्तों, आपने ठीक सुना कि जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वो दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है।

लुट गई मेरे प्यार की नगरी रफ़ी जी के लाइव परफॉर्मेंस आपके लिए पेश किया जाता है आप ही का फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों,

0: Wat een uithaal, wat een uithaal. Oh my god.
1: हाँ.
0: रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनते ही. क्या आलाप है, क्या अंतरा, क्या मुखरा, कितने सुंदरता से निभाई है रफी साहब जी ने. Ja, lieve luisteraars, hier kunt u terecht voor al uw vermaais reclameberichten en anders wat u wenst te horen. Neem gerust contact op. Je aapka, har ik radio he. Radio van hon, jis per aap tune he. Tere intezaar me bas. Tere intezaar me kab se udaas baithe he. तेरे इंतजार में कब से उदास बैठे हैं, तेरे दीदार में आंखें बिछाए बैठे हैं, तू एक नज़र हमको देख ले, तू एक नज़र हमको देख ले, इसी आस में, इसी आस में कब से बेकरार बैठे हैं.

0: मगर भूख मेरी मिटा तो ना सकेंगे नजारे, मगर भूख मेरी मिटा तो ना सकेंगे नजारे।
1: इधर
0: आ गया,
1: बैठ जा,
0: बैठ गया,
1: उठ जा,
0: उठ गया।
1: कहो क्या खाओगी
0: कलेजी
1: ए बेबी।

लो क्या खाओगे जलेबी, आ तो मान गए, आखिरी में मान गए, जो दोगे वही खा लेंगे, क्या करेंगे। कभी कभी हम बेचारे लाचार हो जाते हैं। एक सवाल है आपसे, व्हाट इज योर ग्रोस्ट प्रेस्टेशन टॉट नीतू? व्हाट इज योर ग्रोस्ट प्रेस्टेशन टॉट नीतू? एक सुंदर सा शायरी आपके लिए, और वो ऐसा है कि मेरे दिल की हर धड़कन, हाँ हाँ, कि मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरी हर दुआ प्रार्थना तुम्हारे मुस्कुराहट के लिए है, तुम्हारी हर अदा मेरे दिल को चुराने के लिए है, अब तो मेरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार के लिए ही है। इस गाने के बगैर मैं सोचती हूँ कि प्रोग्राम अधूरा रहेगा, तो अधूरा नहीं होना चाहिए, तो इस गीत से ज़रूर से पूरा हो जाएगा, और वो है रफ़ी जी के लाइफ इन सूरीनाम की आयाया सुक सुक, आयाया सुक सुक। क्योंकि सूरीनाम में ये लाइव शो दी थी रफ़ी जी ने, तो इस गीत में थोड़ा से सूरीनाम के इंस्ट्रूमेंटल भी धर दिया गया है।

जी हाँ, हंसते हंसाते यहाँ से आपके लिए। जी मेरे प्यारे सुनने वालों, मोहम्मद रफी लाइव इन सुरीनाम परमारिबो इन मई 1963 में आप जो थे उन दिनों में तो आपने जरूर से देखे होंगे। और ये भी था द पारल थिएटर, द पारल में परमारिबो सुरीनाम इन 1963। से आपके लिए यादें ताजा किया जाता है अपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: आपको एक बार फिर यहाँ से स्वागत किया जाता है प्रभु। मेरे प्यारे सुनने वालों, महेश रेखा जी की आवाज में यहाँ से हमने सब मिलकर और श्रवण कर ली है और आपको लेकर चलते हैं ये खूबसूरत दिवस और खूबसूरत बनाने के लिए।
1: Volgende liedje is een lingerie, geschreven voor Krishna.

गोपियन भी नाचे साथ में अश्विता बिसाई जी की आवाज में। कहते हैं कि कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ना ही मुश्किल क्यों ना हो, सच उसे अपनाना ही पड़ता है। कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती, दिल को ये भी समझाना पड़ता है। आसान नहीं है जिंदगी में सुकून के दो पल निकालना, आसान नहीं है जिंदगी में सुकून के दो पल निकालना। भूलनी पड़ती है कई उलझनों को सब्र से सुलझाना पड़ता है।

संदीप बदलू जी के आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिया, आपके लिए पेश किया गया है। कहते कि धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ना जरूरी है। नहीं सुलझती उलझने कहीं भाग कर, नहीं सुलझती उलझने कहीं भाग कर, उनका सामना करना जरूरी है। अपनी गलतियों से सीख कर खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। इस बार आपके लिए द किंग सुंदर पुप।

सुंदर पोपो जी की आवाज में। वक्त रहते वक्त की कीमत समझना भी जरूरी है, वक्त रहते वक्त की कीमत समझना जरूरी है।

दोस्त नहीं छोड़ सकते कल पर, सब शुरुआत आज से करना जरूरी है। माना कि मिलता है सफलता, सफलता का फल सही वक्त आने पर। जी हाँ, माना कि मिलता है सफलता का फल वक्त आने पर कोशिश का बीज आज ही बोना जरूरी है। कोशिश का बीज आज ही बोना जरूरी है ना मेरे दोस्त। आपके लिए एक बार फिर यहाँ से सुंदर पोपो जी की आवाज में।

मर्डर लव्स, मर्डर लव्स हमको सुना दी सुंदर पोपो जी। सुंदर पोपो जी की आवाज़ में आपके लिए पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों। छोटी सी इस जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना है ना, अपने और अपनों की दुनिया को खुशियों से सजाना है, ये भी आवश्यक है।

आपको तमाम खुशियाँ और खुश नसीबियाँ पेश किया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। आप शायद अपने जिंदगी में ये सब जरूर से महसूस किया हुआ होगा, देखा होगा, सामना किया होगा कि जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है ना, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। हाँ मेरे दोस्तों, इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुरा कर चलते रहिए। सहयोग एक बहुत ही महंगी चीज है। सहयोग एक महंगी ही चीज है। इससे हर किसी से उम्मीद ना रखे, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के अमीर होते हैं। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से आप और हम जुड़े हैं इस वक्त।

0: जीते ही जीते श्रवण जी अपना पुण्य कमा ली, हम लोग को सुना दी श्रवण कुमार जी के कहानी। वक्त खुद को समय जरूर दे, आपकी पहली जरूरत आप खुद है मेरे प्यारे दोस्तों। खुद को समय जरूर दो, आपकी पहली जरूरत आप खुद है। क्योंकि मेरे दोस्तों, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए मेरे दोस्तों खुद को समय जरूर दे, अपने आप को समय जरूर दे, ये आपके पहली जरूरी है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

सुंदर सा बैठक गाना भजन आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों। और इसी के साथ इस बार आपके लिए पेश किया जाता है सत्यानंद रेखा जी की आवाज़ में

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। वालों को सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम नमस्ते श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 8 मिनट व्यतीत हो चला है 12:08 और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाग शहर से। बीमार लाचार है तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है। जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, कोई ना कोई उत्सव तो अवश्य होगा। फाउन हिंदुस्तानी राजू की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश। उससे पहले आपने सुने विज्ञापन और न्यूज, और उससे पहले शांता जी अपने कार्यक्रम पेश किए। शांता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया जा रहा है। फाउन हिंदुस्तानी राजू के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको एक शुभ शाम। आज दौंदर तक एल्फ यूनी है, 11 जून है, आप तत्पर है। जो लोग जून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगा, शाम होगा, रात होगा, कोई भी पहर होगा, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत है। मैं रहूँगा करीबन 3 बजे तक, शाम 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद हमारे सहयोगी मिलकर आपकी सेवा में रहेंगे। तो शाम का वक्त है जी, हाँ शाम का वक्त। क्या ख्याल अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, शायद आप सोचोगे चलिए सुनते हैं।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ में एक हंसी शाम को। ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो मदन मोहन के साज़ पर ये गीत चला। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलिए लता जी की आवाज़ में। लता जी आपसे कुछ कह रही है, चलो सुनते हैं।
1: आज राखी का दिन है, लो मुझे राखी बांधो। आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे, और मैंने भी यही कोशिश की कि बहन का नाता पूरी तरह निभाती रहूं।

तो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। लता जी की आवाज़ में हमने आपको सुनाए मदन मोहन के साज पर फिल्म संयोग में से निकाल कर हमने चलाए हैं। तो चलिए हम चलते हैं फिल्म कठपुतली की ओर। फिल्म कठपुतली में से निकाल रहे हैं नहीं कहते इन सीमित का ये फिल्म है।

एक बात पूछूं, फिल्म कठपुतली में से निकाले हैं लता जी और रवि साहब की आवाज़ में, देखते हैं कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने पेश की। चलिए, यूतरह के रहने वाली देखते हैं बेया जी। यूतरह के रहने वाली बेया जी ने तार की है। बेया जी, आपका हृदय से स्वागत है। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, कितने लोग भी हैं सुनते हैं लेकिन बताते नहीं, इसीलिए नहीं पता चलता है। बहरहाल आपने बता दिए, तो बेया आपको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। तो लीजिए, हम आपके लिए एक गीत चला देते हैं। उत्तराखंड के रहने वाले बेया जी के लिए शुभकामना के साथ। बेया जी, इस तरह से है।

वाह, क्या शानदार गीत चला फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की इस तरह से। और ये गीत हमने चलाए हैं, देखते हैं उत्तराखंड के रहने वाले बिया जी के लिए। बिया जी, उम्मीद गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। और ये गीत चला सुमन कल्याणपुर रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म चांदो सूरज में से निकाल कर देखूँ तो निकतिन फैफ का ये गीत है, सलील चौधरी के साज पर पेश हुआ।

दिल की बातें दिल ही जाने हैं, लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफ का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ़ की आवाज़ में निखते एन सस्त का ये गीत, क्या ख्याल है।

0: उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए देखते हैं सेलॉन, सेलॉन से तार किए हैं श्रीमती आनी सरजुमी सिर और उनके पति श्रीमान ज्योति सरजुमी सिर। आप दोनों को भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है कि इतनी दूर दराज से भी आप तार किए हैं यानी सेलॉन से। तो लीजिए आनी सरजुमी सिर जी के लिए और उनके पति ज्योति सरजुमी सिर के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम सुनाते हैं आप दोनों को।
1: बोलो सा

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल कर। और ये गीत हमने पेश किए सीलन के रहने वाली आनी सरजू मिश्र जी और उनके पति ज्योति सरजू मिश्र जी को शुभकामना के साथ दोनों को धन्यवाद देते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत चलाए। आनी जी और ज्योति जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है, देखते हैं, सूत्रमेर। सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी, सूत्रमेर के में रहने वाली मीला जी ने तार की। मीला जी आप भी कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपके शौहर जनाब मंसूर के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं इस तरह से।

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ दख का ये गीत है, और ये गीत चला देखते हैं सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए और उनके खाविन भैया मंसूर के लिए शुभकामना के साथ हमने चलाए हैं ये गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। मीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की, और ये गीत हमने पेश किए अल्फ़रान द रेन के रहने वाले श्रीमान चांद्र गुनाथ जी और उनकी धर्मपत्नी खिसला जी के लिए। शुभकामना के साथ आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सैफ अंत का ये गीत, 1971 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 450 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगद ए नसीब तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले हैं एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

0: आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाज़ार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया। फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं। जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है। तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।
1: तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं कि सिलसिला हम आपको सुनाएं, ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफन सैफन दख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो गीत चल रहा है अम्स्टरडम के रहने वाले श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी धर्मपत्नी युवती। हीरा प्रसाद जोधा उनकी धर्मपत्नी युवती के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम आप सबको सुना रहे हैं इस तरह से ओफर फाहन रेडियो। तो लीजिए माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। और ये गीत हमने पेश की अमस्टरडम, अमस्टरडम के रहने वाले श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा के लिए और उनके धर्मपत्नी वती के लिए। शुभकामना के साथ हीरा प्रसाद जोधा और वती जी, आप दोनों को भी पावन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पेश किया जा रहा है। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

तुम्हें ने दिल को दिल समझा नहीं है। मैथ मुकेश फिल्म चांद ग्रहण में से ये गीत हमने निकाले। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

फिल्म जेलर में से निकाले हैं ये गीत हम प्यार में जलने वालों की लता जी की आवाज में हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत है हमने लिखे हैं और वह है दिल लगी ने दी हवा, एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी। चलो हम आपको सुनाते हैं ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत है इस तरह से।

0: तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये शानदार गीत हमने पेश की है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। भैया राजन, अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो एक बार फिर तार कीजिए, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लाइन कट गया। उस नंबर पर फिर तार कीजिए, मैं तुरंत उठा लूँगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ भैया राजन। हाँ चलो देखते हैं, हेलो, नहीं गई या भैया, एक दाई फिर तार करो तो जरा देखूँ क्या हुआ यंत्र में। हाँ हेलो भैया राजन। अच्छा, जब तक भैया राजन शायद कोशिश कर रहा होगा तार करने को, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत इस तरह से आ रहा है। और जब भैया, हाँ जहाँ तक मेरा ख्याल अब ठीक है। हेलो, हाँ भैया राजन, हम लाइन लेते हैं, लाइन पर हमने ये निकाल बह रहा है एक मिनट। हेलो
1: भैया जी।
0: भैया कैसे समाचार? भैया मोन जी बोल, सुनने वाले सरता हूँ, बहुत दिनों बाद भैया मोन की आवाज़ रेडियो पर आया है। भैया मोन बताओ कैसे समाचार है?
1: सब चलत है भैया जी, सब चलत है, यही पे बाटी
0: दशहरकल में ना
1: जी।
0: हाँ मोई, बहुत अच्छी बात है, कितना लोग है वहाँ, सबके नाम लेवत जाओ
1: भैया जी। अब हम कैसे बताएं,
0: तो राजन के दे बोलते सबके नाम लेवल जाए, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से सबके बहुत स्वागत है, जितना लोग हैं वहाँ सबके नाम ले लो।
2: भैया गंगा,
0: भैया राजन कैसे
2: बैठल है? प्रेम रवि बैठल है, भैया आनंद है, और दुई को आनंद बगले बगले में बैठल है।
0: ओके,
2: प्रकाश प्रणाम रहा वो चल गए, शांति रह चल गए, और एगो पावन के जन रहा आनंद विराज, वो बैठल है मुंगी बोर्ड बैठल है।
0: तो ताल तीन आनंद है।
2: हाँ तीन आनंद है, और अब हम लोग के बसु कर रहा स्टूडेंट के चार गो स्टूडेंट आए रहा।
0: ओके,
2: बपालस पहले से करील है, नेट चल गए, ये सब कारता खेल दोरो जारी है।
0: नाम मोई, बहुत अच्छी बात है, आप भैया जितने नाम ले ले भैया राजन, फान हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से सबके हृदय से स्वागत है। और दशहरकल में लोग आते हैं हर बृहस्पतिवार को, भैया राजन के पास नंबर है, तो अगर आप भैया राजन को तार करोगे तो सर्कल में भी आप भाग ले सकते हैं, आप भी पहुंच जा सकते हैं। तो भैया राजन का नंबर, भैया राजन अपन नंबर दे दे वो
2: लोग 3 6 5 3 2 4 3।
0: अच्छा ओके, लेकिन ये तो स्टूडियो का नंबर, बाकी तो हाँ नंबर दे दिए तब सब जान जाएगी।
2: 9 6 5 2 8 3 4 9 4 9 4।
0: अच्छा भैया राजन, और कोई मांग रहा कुछ बोले हुआ भैया मोन रहा वो देव।
2: हाँ भैया मोन कुछ माता बोले सुनर बोले, बहुत दिन भैने बतिया सकन
0: एकदम बरूर।
1: भैया गंगा जी
0: बोलो,
1: आपके परसामा के बधाई हो, यही बहाने हम आपके दर्शन हुई है रेडियो पे।
0: बहुत अच्छी बात
1: जी।
0: और कैसे तंदुरुस्ती, मोई चले?
1: हाँ सब जात है भैया, सब जात है।
0: ढकेले रही हो, रुके ना दियो?
1: ना ना ना पकड़े बाटी।
0: हाँ अच्छा, और कुछ मांगत रहे बोलो भैया मोहन। हेलो भैया मोन, जहाँ तक मेरा ख्याल है भैया मोन ने रख दिए। बहरहाल ये था भैया मोन जी बोध, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बहुत पुराना मित्र हैं, और कार्यक्रम में हमें हमेशा भाग लेते रहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पेश करते हैं ये गीत इस तरह से, सभी सर्कल के जितना हैं, सर्कल के जो लोग हैं वहाँ सदस्य बैठे हुए हैं, शुभकामना के साथ।

धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। और लता जी फिल्म गोरा और काला में से निकाले हैं निकिन ट्विंस इवेंट का ये गीत, और हमने पेश किया फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं, घड़ी तो कुछ और बता रहा है। जी हाँ, घड़ी कुछ और बता रहा है, लेकिन चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस गीत के बाद तो फिर हम वापस आते हैं, बस हम यूँ जाते हैं और यूँ आ रहे हैं इस तरह से। चलो देखते हैं।

मैं थी मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमने प्लेयर में तीन गाने रखे हैं, जी हाँ तीन गाने, चार गाने रखे हैं। अब सोचता आया, सोचता ये हूँ कहाँ शुरू करूँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आप सुनिए, फिल्म दोस्त बदन में से है।

नैनों में बदरा छाए, ये गीत हमने निकाले हैं मदन मोहन के साज पर, मेरा साया में से, और हमने पेश की ओ फरफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं, ये सुबह के लाली के जिक्र कर रहा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि सुबह ये गीत चलाना चाहिए या शाम को या दोपहर को या रात को, ये पता नहीं है, क्योंकि ये गीत मेरे दिमाग से निकल गया। इसका धुन कैसे है, बात कैसी है, आशा जी एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना रहे हैं। फिल्म है अभी तो ये, अभी अभी तो झीलें हैं, अभी तो झीलें में से निकाल रहे हैं निकती सैफ न सैफ तक। चलो सुनते हैं, चलो एक बार मैं भी बेवक्त के शहनाई बजा दूँ।

तू लाली है सवेरे वाली फिल्म है अभी तो जी लें नहीं इतनी सेफ न सेफन तक आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। दरअसल में ये गीत हमने पहली बार चलाया, पता नहीं धुप्पल में कैसे मिल गया। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है जगमोहन बख्शी और सपन सेन गुप्ता। मुझे इस फिल्म के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब हमने सुन लिए, देख लिए और जान लिए, तब ढूंढेंगे ये फिल्म कि कैसा फिल्म है ये। अभी तो जी लेने नेकतीन सैफन सैफन तक ये गीत हम आपको सुनाए ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

है इसी में प्यार की आबरू, मदन मोहन के साज पर लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। मैं भी एक बेगीत बैठ के बहुत दिनों बाद सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतने खो गए थे इस गीत में कि हमने भूल गए ये गीत भी चून करने को कि ये गीत कैसा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसा गीत है।

बस महालक्ष्मी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत उर्फ़ाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए हम अगला गीत चलाने वाले हैं और वो ये है, चलो देखते हैं एवरग्रीन किशोर कुमार जी आशा जी को कितना छेड़ता है। ये छेड़खानी की गीत जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे नहीं पता है कि ये किन गीत कौन सा है। चलो आप भी सुनते हैं, मैं चला रहा हूँ और साथ ही साथ मैं भी सुनूँगा।

0: अच्छा तो ये गीत था, तुम याद बहुत आते थो आते हो रास्ते प्यार के, फिल्म का नाम है निगदिन ट्विन तख्त, 1982 का ये फिल्म हम आपको सुना है। चलिए अगला गीत है लता जी एक बार फिर मदन मोहन के साज पर।
1: ये मेरी आंखों देखी बात है कि कभी कभी मदन भैया बस 10 मिनट में तर्ज बना देते थे, और तर्ज भी कैसी, वाह। शायरी पर वो बहुत जोर देते थे, जब तक शब्दों में गहराई ना हो गीतकार को कागज वापस लौटा देते थे। फिर कोशिश कीजिए, जब दिल से बात निकलेगी तब असर करेगी। एक दिन मजरू साहब का गीत रिकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तर्ज तो थी ही अच्छी, कविता बहुत ही सुंदर थी। रिकॉर्डिंग के बाद मदन भैया इतने ज़्यादा खुश थे कि फौरन पहुंचे स्टूडियो में शाबाशी देने शायर को। आप जानते हैं किस तरह शाबाशी दी? बेचारे मजरू साहब के पेट पर हल्के हल्के दर्जनों मुक्के बरसा दिए। मजरू साहब ठहरे शायर, और वो भी सुल्तानपुर यूपी के। मरहबा का ये तरीका उनके लिए यकीनन एक नया तजुर्बा था। पता नहीं पुरदर्द था या पुरकैश, मदन भैया बोले, घर चलिए, मैं आपको अपने हाथ से पका कर खाना खिलाऊंगा। रस चाहे स्वर का हो चाहे रसोई का, वो दोनों हल्के दर्जनों मुक्के बरसा दिए। मजरू साहब ठहरे शायर, और वो भी सुल्तानपुर यूपी के। मरहबा का ये तरीका उनके लिए यकीनन एक नया तजुर्बा था। पता नहीं पुरदर्द था या पुरकैश, मदन भैया बोले, घर चलिए, मैं आपको अपने हाथ से पका कर खाना खिलाऊंगा। रस चाहे स्वर का हो चाहे रसोई का, वो दोनों में माहिर थे।

तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये शानदार गीत भी चला मदन मोहन के साज पर, हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये निकाले फिल्म चिराग में से हमने पेश की। चलिए धीरे धीरे तो समय हो रहा कि हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको ये भी गीत सुना दूं, मैं कुमारी अलबेली, ये गीत के बारे में मुझे भी नहीं पता, पता नहीं अगर चलेगा तो शायद याद हो जाएगा। फिल्म बाबू नई गिनती फाइफन तख्त से निकाल रहे हैं, जी हाँ, रोशन के साज पर मैं कुमारी अलबेली, चलो सुनते हैं।

अच्छा ये था मैं कुंवारी अलबेली, फिल्म बाबू में से निकाले हैं 1985 का निकली फैफन तख्त का ये गीत, और हमने पेश की रोशन के साज पर आशा जी और किशोर कुमार जी। चलिए सुनते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है। जी हाँ, डाकू को का सरदार पूछता कितने लोग हैं, और मैं पूछ रहा हूँ कितना मज़ा आ रहा है।

कितना मज़ा आ रहा है। लता जी आपको सुनाए राजा जानी में से निकाल कर नेक दिन तुए से ही में तक 1972 का ये गीत हम आपको सुनाए। थोड़ी सी समय बाकी है तो आपको ये सुना दूँ, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सबका स्वागत करते हुए यहाँ से हम आपसे विदाई लेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे। और तार करने वाले जो थे कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, डायरेक्सी की तरफ से इन लोगों को भी धन्यवाद दिया जा रहा है। मैं अपने तरफ से भी इन लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ, जो है इधर के रहने वाली बेया जी, और देखते हैं सेलांद के रहने वाली आनी जी, और ज्योतिष जी ज्योतिष सरजू मिसर आनी सरजू मिसर, और सुतरमेर के रहने वाली मीला जी उनके खावी मंजूर, और अल्फनांदरन के रहने वाले चांद्र गुनाथ और खिसला जी, और आमस्टरडाम के रहने वाला हीरा प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी वती जी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। और यहाँ तक था मेरी कार्यक्रम जो हमने पेश की।

0: रहे।
1: अच्छा, यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश किया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं, सर्कल के लोग भी तार किए थे, भैया राजन, भैया मोहन और उनके जितने साथी हैं वहाँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिल रहा हूँ अगले सप्ताह। जी हाँ, अगले सप्ताह मैं आपसे मिल रहा हूँ। तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। आने वाला रविवार के कार्यक्रम में मैं नहीं रहूँगा। मैं आपसे मिल रहा हूँ अगले सप्ताह दोंदरदाह को। आने वाला सोमदाह के मैं नहीं रहूँगा। हमारे सहयोगी आप कार्यक्रम पेश करेंगे, तो उन लोगों को आप अवश्य प्रोत्साहन अवश्य दीजिए। मेरे बाद आप सुनोगे विज्ञापन न्यूज़। आप सबको एक शुभ शाम। हमारे सहयोगी मिलके आपके सेवा में रहेंगे।

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 93.5 MHz और नहीं कनाल 8 पर, और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत वसलमो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति। कविता कृष्णामूर्ति शान का गाया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों। कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है। कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम। कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों। कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों। उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ पे।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबेन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

और संजना आई लव यू, संजना आई लव यू हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और कायस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता, तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज

बड़ी खूबसूरत लग रही हो। हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है, और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे, और कहते हैं मिलना इफ्तिताह था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था। हमारे प्यारे दोस्तों, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र के रहे उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कम बखत पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया, जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रिया घोषाल के ओर, शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे। दोस्तों फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका। दोस्तों और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 4। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमर 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है। दोस्तों कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो, दोस्तों दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है, तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी, और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो, रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जाते हैं, वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

और भीगी रात नेगेटिव 65 का ये फिल्म है दोस्तों। हम और आगे को लेकर अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम अपने गीतों को और आगे को बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, अगर बात करना है तो दिल से करो, ऊपर मन से करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। नई हंसी जीवन का ही फिल्म है, फिल्म के नाम है सच्चा और झूठा, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज ने काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और क्या बात करती हो राजेश खन्ना का और मुमताज का ये रोमांटिक सॉन्ग यानी फिल्म थी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी रोमांटिक प्यार भरी गीतों की यानी सॉन्ग आपके हम सुनाएंगे और रेडियो फहम के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों देखा जाए और कितनी दिनों बाद आज हम आप लोग को फिल्म पकीसा का एक गीत सुनाएंगे। और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार ने काम किए थे। और आज हम आप लोग को इस गीत को कितने दिनों बाद सुनाएंगे। निहत हों का ये सॉन्ग है।

और ये गीत फिल्म पकीसा का निकाले हुए गीत सॉन्ग हम आप लोग को कितनों दिनों बाद आप लोग को हमने सुनाए हैं। और दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये हम तुम चोरी से और चोरी में छिछोरी हो जाते हैं और तोरी में क्या क्या ना हो जाते भैया, चोरी में क्या क्या ना हो जाते हैं। और ये है फिल्म धरती कहे पुकार का ये सॉन्ग है जिचिंदर नंदा और नाइटिंगेल लता जी और करोड़ चुराने वाला मुकेश माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और ये तुम जो हम तुम चोरी से और बने भी है कौची एक डोरी से जइयो कहाँ ले हुजूर। उसके बाद में हमारे दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम का नाम है सच्चाई मजेदार समाचार, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक हम 6 से 9 बजे रात्रि तक चलाते हैं, मंगलवार को 5 से 7 बजे तक और रविवार को दिन में 1 बजे हम अपना यानी प्रोग्राम को चलाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कौन दिशा से मैं लेके चला रे भतुया नदिया का पार, नदिया के पार फिल्म के नाम है। हेमलता जसपाल सिंह इस गीत को रविंदर जैन के सॉन्ग में और इस गीत को गाया है, एक बहुत मस्त भरी प्यार भरी गीत है। फिल्म के नाम है नदिया के पार नीह दिन होंद एन तुई तख्त का ये गीत है। और आओ मिलकर ये गीत को सुना जाए, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हमें ही आशा उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा जरूर लगेंगे। आओ सुना जाए।

0: और मन ने भरमाई और जाकेरी बतुया कौन दिशा में लेके चला री बतुया। नदिया कपारी फिल्म का नाम है। हेमलता इस गीत को गाया है और हम चलते हैं दोस्तों अपना प्रोग्राम लेकर आगे। और ये है इस फिल्म किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। और आओ मिलकर सुना जाए कौन सा फिल्म का गीत है अभी हमें पता चली गई तो हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि ये कौन सा फिल्म का ये गीत है। लेकिन इसमें काम किया है लीना चंद्रवरकर और संजीव कुमार। गम का फसाना लेना, गम का फसाना लेना। तो आओ सुना जाए ये कौन सा गम है और कौन सा फसाना है हमारे दोस्तों। ये रोमांटिक मूवी का सॉन्ग है, क्लासिक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। आओ सुना जाए।
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा।

और गम का फसाना बन गया। अच्छा, किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। हमारे दोस्तों, हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत क्या होगा, आओ मिलके सुनाई गोरी तेरी गाँव बड़ा प्यारा। और कभी कभी जो गोरी लोन होता है वो गाँव में रहता है, देहात में रहते हैं, और ये गीत भी है गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा है। तो आओ सुना जाए इस गीत का। फिल्म का नाम है चित्त चोर नीघंती ससीवत का। ये गीत है, यूसुफ दास ने इस गीत को गाया है।

गोर गोरी तेरा गांव ना सिर्फ तेरा गांव, तुम भी बहुत प्यारा है, तुम भी बहुत प्यारा है गोरी, जैसे तुम प्यारा है ऐसे तुम्हारा गांव भी प्यारा है। और इस फिल्म का नाम है चित्तचोर, जिसमें शरीना वहाप ने काम की है। और इसके बाद हम पुरानी गीतों की भान प्रोग्राम लेकर चलते हैं। सॉन्ग के नाम है दिल विल प्यार व्यार, अरे मैं क्या जानू भैया हम तो छोटा लड़का है। फिल्म के नाम है शागिर्द नहीं खती जीवन शस्त्र का। और ये प्यार यार कुछ जाने भैया, अगर ये प्यार यार आपको मालूम है तो हमें आप लोग जरूर बतला देना, हमें भी मालूम नहीं है प्यार क्या होता है। तो आओ इस गीत से सुना जाए तो शायद मालूम हो जाएगा।

और ये दिल विल प्यार यार जॉनी के भी मालूम ना है दोस्तों, अगर आपको ये मालूम हो तो हमें जरूर बता देना कि ये दिल उल प्यार यार क्या होता है। अगर अगर आपकी दिल जो है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, कोरा है, किसी आप के दिल में नहीं बसा है, तो ये गीत आपको सुनना चाहिए।

जरूर तेरे प्यार में क्या क्या होता है। अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है। ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज़ कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत कर्म देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

बते इनायत कर्म देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जोनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

मेरे दोस्तों, यहाँ से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं, प्यार भरी गीतों की, और बाहर प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलते हैं और आगे को तो प्यार भरी बातें तो करना हमारा ही काम है यारो, कि काश उसे चाहने के अरमान न होता, काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता, मैं होश में रहती हुए अंजाम नहीं होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। दोस्तों नौकीर वसमोए, काश उसने चाहने का अरमान ना होता, काश उसे चाहने का अरमान न होता, मैं होश में रहती हुए अनजान न होता, न प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता। तो हम चलते हैं, मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन, और फिल्म के नाम है सलामी अलकायांगनी कुमार शानू।

और मिले तुमसे बिछड़ने के और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहते हैं।

ओ सनम और ओ सनम दोस्तों, और ओ सनम में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया, इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है, और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है या तोड़ते हैं, और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, नाराज हो गए है क्या अरिजीत सिंह की ओर है।

0: क्या कर रहे हो तुम? हाँ याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था।
1: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

बेदर्जी से प्यार का सहारा ना मिला कि वो तारों की तरह, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तनहा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त उम्मीद आना ना था, वो तो बीते वक्त उन्हें आना था। हम यूं ही सारी रात करवते बदलते ही रहे। और यहाँ से एक गीत और हम आप लोग को सुनाने जाते हैं, और वो गीत क्या है, अब नाम मोहब्बत के लेन तो आया है गुलाम। उदित नारायण अलका यागनी फिल्म के नाम है गुलाम। दोस्तों गुलाम फिल्म का नाम है। एक लम्हे के लिए मेरा नजरों के सामने आया, एक मुद्दत से माने खुद को आईने में नहीं देखा।

और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और ओ जब जुल्फे उड़ते हैं तो कुमारियों का दिल क्यों मचलते हैं, आपको पता है तो जरूर बता देना कि क्यों मचलते हैं, कि कहते हैं कि जब आपका नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल को क्या मुस्कुराता है। जब आपके नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है, है तसल्ली होती है मन को कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। अक्सर हम अपनी रात यूं बर्बाद करती है, अक्सर हम अपनी रात क्यों बर्बाद करती है, बैठ के किसी कोने में उनको याद करती है, उनके वापिस आने की उम्मीद तो छोड़ दी कब की, फिर भी ना जाने क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करती है। हम चलते हैं नाइटिंगेल, लता जी का एक सॉन्ग है जो एक हिट फिल्म था, फिल्म के नाम है बॉबी।

की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।

और अफसरे कोई लड़की इस हाल में कोई जरूर कभी 16 वर्ष के थे दोस्तों। फिल्म के नाम है बॉबी और ये यानी कि एक हिट सुपर हिट फिल्म थी ऋषि कपूर का दोस्तों और डिंपल का। हम कहते हैं कि किस्मत के लकीरों पर, किस्मत के लकीरों पर यकीन, किस्मत के लकीरों पर यकीन करना छोड़ दिया है जॉनी, किस्मत के लकीरों पर और यकीन कर दिया है जॉनी। जब इंसान बदल सकता है तो ये लकीरें क्यों नहीं, ये लकीरें क्यों नहीं दोस्तों। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। कोई देखे तो हमारी बेबसी, कोई देखे तो हमारी बेबसी, हम सभी के हो चाहते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। हम सबको हो जाते हैं पर हमारा कोई नहीं होता है दोस्तों। कि कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, निभा सको तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी के जिंदगी बर्बाद मत करना। फूल तुम्हें हम भेजाए हैं यहाँ रेडियो फाहुन के माध्यम से और ये है मैथिली मुकेश और लता जी का ये सुपर हिट सॉन्ग।

और फूल भी, और भेजा है खत में, और फूल नहीं वो किसी का दिल है दोस्तों, यानी कि फूल के खुशबू में किसी के दिल भी चला जाता है कि कहते हैं ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटे शायद ना आ सकूं, ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटते शायद ना आ सकूं, हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो खबर कर देना सारी की सारी, सारी की सारी ले जाऊंगा मैं, यानी कि तुम्हारा गम। तो दोस्त इसी को कहते हैं दोस्तों कि बहुत रोया है दिल, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, कुछ ना मिला रूप से भी फरियाद करके, वो कह गए मैं ना दूंगी साथ आपका, कोई पूछे उन्हें क्या मिला हमें बर्बाद करके। हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, वो है फिल्म के नाम है लव स्टोरी जिसमें, और वो है कुमार गौरव यंती इसमें काम किया है, और ये भी एक बहुत सुपर हिट फिल्म थी दोस्तों। ये गीत हम आप लोग को जरूर सुनाएंगे।

और मैं भी आई आई आई लव स्टोरी फिल्म का नाम है 1981 का। और जितने लोग इस समय पे 18-19 बरिश के थे दोस्तों, तो फुल हाउस के साथ हमारा सूरीनाम का जो जितना फिल्म हाउस थे वो एकदम फुल थे दोस्तों। इस फिल्म भी हम भी कई बार जाकर देखे है लेकिन मन नहीं भरा। एक मोहब्बत भरी प्यार का ये फिल्म है और हम हसरत करते हैं जिनकी वो तो छुप गई कहीं। अगर तुम साथ दे तो नजर आ जाएंगी वो कहीं कि अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। उसकी खुशी ढूंढते रहते तो बदनाम हो गई हम। बदल पे छलके हैं और नैतिकी लता जी का ये एक जोंग है दोस्तों। आ मिलकर सुना जाए जिसमें अनिल ऋषि मीनाक्षी काम किए हैं। और इस फिल्म का हम खोजते हैं ये कौन फिल्म का गीत है। अगर जो हमें मालूम हो गया दोस्तों तो आपको हम जरूर बता देंगे। लेकिन और इस फिल्म में काम किया है मीनाक्षी काम किया है दोस्तों। और आओ मिलकर सुना जाए इस गीत को।

और बादल पे छलके आ, और इसमें अनिल कपूर, ऋषि मीनाक्षी सोनम, नैतिकी लता जी और श्रीश का ये गाया यानी कि फिल्म है और बदल पे छलके है जोंग का नाम है। और दोस्तों हम चलते हैं कुछ शायर और शेरी के ओर और कहते हैं कि पलकों की हिफाजत होती है, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल के अमानत होती है, हाय और हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। और कितने लोग हैं जो अलीन स्तंद है दोस्तों, जो अकेले रहते हैं, अकेलापन है, मेंस दी अलीन साइन फॉर दी मेंस हैप्पी की नाम लिख अनपार मोशाइश एंड खाद रोम कि ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना हम हैं किसी के ना हमारा है कोई। कहते हैं चेहरे के हंसी से हर गम छुपाऊं, बहुत कुछ बोला पर कुछ ना बताऊं, कुछ ना रूठो कभी पर सबको मनाओ, खुद ना रूठो पर किसी को पर सबको मनाओ, ये राज है जिंदगी का बस जीते जाओ। और कभी कभी प्यार करते हैं तुम किसी से लेकिन वो अमानत किसी और का है।

और दोस्तों तू प्यार है और किसी और का और तुसे चाहता है कोई और है कि कहते हैं प्यार का बदला कभी चुका नहीं सकेंगे, प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह कर भी आपको भुला ना सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़कर कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। और जो लोग अकेले रहते हैं वो कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरी महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है बस अल्फाज नया लाया हूँ, ऐ काश दूर रहने वाले ठड़को एक बात, तुहके एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरा ख्याल आए तो अपना ख्याल जरूर रखना।

ये तो सही बात है दोस्तों, जैसा मेरा प्यार है वैसा हमारा गुस्सा वो भी है दोस्तों। आपको यहाँ गीत में बताए गए है कि कहते हैं किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आ जाओ। और कहते यार करते हैं तुम्हें तन्हाई में, याद करते हैं तुम्हें तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में, हमें मत ढूंढना दुनिया के बीच में, हम मिलेंगे तुम्हें तो तुम्हारी ही परछाई में। तो दोस्तों ये कुछ शायरी और शायरी आप लोग के लिए हम चलाएं।

ओ दोस्तों, बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 MHz पर और नहीं कनाल 8 पर, और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं, हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में, पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वस्वलमो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गाया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए,
1: बचाने तो मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा, सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिन नौ यानी कि जुबेन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

और संजना आई लव यू, संजना आई लव यू हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और कायस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए, वह कितना भी बदल जाए, मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता, तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्धरात मान मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, निहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

और थोड़ा थोड़ा प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों। और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए कि कहते हैं उम्र के रह उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जयबाद बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कम बखत पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल के ओर। शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहाँ कहाँ ना लागे। दोस्तों फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका। दोस्तों और प्यार भरी प्रोग्राम यहाँ से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 4 7। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमर 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है। दोस्तों कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो, दोस्तों दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है, तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी, और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो, रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जाते हैं, वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

और भीगी रात 1965 का ये फिल्म है दोस्तों, हम और आगे को लेकर अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम अपनी गीतों को और आगे को बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, अगर बात करना है तो दिल से करो, ऊपर मन से करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। नेहा जीवन का ही फिल्म है, फिल्म के नाम है सच्चा और झूठा, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज ने काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और क्या बात करती हो, राजेश खन्ना का और मुमताज का ये रोमांटिक सॉन्ग यानी फिल्म थी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी रोमांटिक प्यार भरी गीतों की यानी सॉन्ग आपके हम सुनाएंगे और रेडियो फहम के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों देखा जाए और कितनी दिनों बाद आज हम आप लोग को फिल्म पकीसा का एक गीत सुनाएंगे। और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार ने काम किए थे। और आज हम आप लोग को इस गीत को कितने दिनों बाद सुनाएंगे। 1972 का ये सॉन्ग है।

और ये गीत फिल्म पकीसा का निकाले हुए गीत सॉन्ग हम आप लोग को कितनों दिनों बाद आप लोग को हमने सुनाए हैं। और दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये हम तुम चोरी से और चोरी में छिछोरी हो जाते हैं और तोरी में क्या क्या ना हो जाते भैया, चोरी में क्या क्या ना हो जाते हैं। और ये है फिल्म धरती कहे पुकार का ये सॉन्ग है जितेंद्र नंदा और नाइटिंगेल लता जी और करोड़ चुराने वाला मुकेश माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और ये तुम जो हम तुम चोरी से और बने भी है कौची एक डोरी से जइयो कहाँ रे हुजूर। उसके बाद में हमारे दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम का नाम है सच्चाई मजेदार समाचार, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक हम 6 से 9 बजे रात्रि तक चलाते हैं, मंगलवार को 5 से 7 बजे तक और रविवार को दिन में 1 बजे हम अपना यानी प्रोग्राम को चलाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कौन दिशा से मैं लेके चला रे भतुया, नदिया का पार नदिया के पार फिल्म के नाम है। हेमलता जसपाल सिंह इस गीत को रविंदर जैन के सॉन्ग में और इस गीत को गाया है, एक बहुत मस्त भरी प्यार भरी गीत है। फिल्म के नाम है नदिया के पार नेह दिन होंदित एंतुन तख्त का ये गीत है। और आओ मिलकर ये गीत को सुना जाए, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हमें ही आशा उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा जरूर लगेंगे। आओ सुना जाए।

और मन ने भरमाई और जाकेरी बतुया कौन दिशा में लेके चला री बतुया। नदिया कपारी फिल्म का नाम है। हेमलता इस गीत को गाया है और हम चलते हैं दोस्तों अपना प्रोग्राम लेकर आगे। और ये है इस फिल्म किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। और आओ मिल का सुना जाए कौन सा फिल्म का गीत है अभी हमें पता चली गई तो हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि ये कौन सा फिल्म का ये गीत है। लेकिन इसमें काम किया है लीना चंद्रवरकर और संजीव कुमार। गम का फसाना लेना, गम का फसाना लेना। तो आओ सुना जाए ये कौन सा गम है और कौन सा फसाना।

और गम का फसाना बन गया। अच्छा, किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। हमारे दोस्तों, हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत क्या होगा, आओ मिलके सुनाएं गोरी तेरी गांव बड़ा प्यारा। और कभी कभी जो गोरी लोन होता है वो गांव में रहता है, देहात में रहते हैं, और ये गीत भी है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है। तो आओ सुना जाए इस गीत का। फिल्म का नाम है चित्त चोर नीघंती ससी का। ये गीत है, यूसुफ दास ने इस गीत को गाया है।

गोर गोरी तेरा गांव ना शरीफ तेरा गांव तुम भी बहुत प्यारा है, तुम भी बहुत प्यारा है गोरी, जैसे तुम प्यारा है ऐसे तुम्हारा गांव भी प्यारा है। और इस फिल्म का नाम है चित्तचोर, जिसमें शरीना वहाब ने काम की है। और इसके बाद हम पुरानी गीतों की भार प्रोग्राम लेकर चलते हैं। सॉन्ग के नाम है दिल विल प्यार व्यार, अरे मैं क्या जानू भैया हम तो छोटा लड़का है। फिल्म के नाम है शागिर्द नहीं हती सीवने सस्तक का। और ये प्यार यार कुछ जाने भैया, अगर ये प्यार यार आपको मालूम है तो हमें आप लोग जरूर बतला देना, हमें भी मालूम नहीं है प्यार क्या होता है। तो आओ इस गीत से सुना जाए तो शायद मालूम हो जाएगा।

और ये दिल विल प्यार यार जॉनी के भी मालूम ना है दोस्तों, अगर आपको जो मालूम हो तो हमें जरूर बता देना कि ये दिल उल प्यार यार क्या होता है। और अगर अगर आपकी दिल जो है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, कोरा है, किसी आम के दिल में नहीं बसा है, तो ये गीत आपको सुनना चाहिए।

और तेरे प्यार में क्या क्या होता है, अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है, ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत कर्म देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

बस मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जोनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की वो फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों यहाँ से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं, प्यार भरी गीतों की और बाहर प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलते हैं और आगे को तो प्यार भरी बातें तो करना हमारा ही काम है यारो, कि काश उसे चाहने के अरमान न होता, काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता, मैं होश में रहती हुए अंजाम नहीं होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। दोस्तों नौकीर वसमोए, काश उसने चाहने का अरमान ना होता, काश उसे चाहने का अरमान न होता, मैं होश में रहती हुए अनजान न होता, न प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता। तो हम चलते हैं, मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन, और फिल्म के नाम है सलामी अलकायांगनी कुमार शानू।

और मिले तुमसे बिछड़ने के, और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहते हैं।

ओ सनम और ओ सनम दोस्तों, और ओ सनम में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया, इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है, और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है या तोड़ते हैं, और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, तेरा नाम धोखा रख दू नाराज हो गए है क्या। अरिजीत सिंह की ओर है।

0: इश्क थी मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: और तेरा नाम धोखा रख दूं और तुम नाराज हो गया है क्या? कि कहते हैं हमने ना मोहब्बत मिली, हमें ना मोहब्बत मिली, और हमें ना मोहब्बत मिली ना प्यार मिला, हमको जो भी मिला बेवफा यार मिला। अपने तो बन गई तमाशा जिंदगी, हर कोई मकसद का तलगार मिला। कि कहते हैं दोस्तों प्यार में धोखा होता है, तूने ही लगा दिया इल्जाम इस बेवफाई, अदालत भी तेरी ही, गवाह भी तू ही थी। तो हमारे यारो, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, और ये गीत है प्यार का दोस्तों, प्यार का सॉन्ग है, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला।
2: जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी करेगी?
3: हाँ।
2: प्रॉमिस?
3: प्रॉमिस।
2: तो फिर मैं अभी आया।
3: उफ़ो, ये फिर कहाँ चला गया?

0: क्या कर रही हो तुम? हाँ याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था।
1: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

बिदर्जी से प्यार का सहारा ना मिला कि वो तारों की तरह, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तनहा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त उम्मीद आना ना था, वो तो बीते वक्त उन्हें आना था। हम यूं ही सारी रात करवते बदलते ही रहे। और यहाँ से एक गीत और हम आप लोग को सुनाने जाते हैं, और वो गीत क्या है, अब नाम मोहब्बत के लेन तो आया है गुलाम। उदित नारायण अलका यागनी फिल्म के नाम है गुलाम। दोस्तों गुलाम फिल्म का नाम है। एक लम्हे के लिए मेरा नजरों के सामने आया, एक मुद्दत से माने खुद को आईने में नहीं देखा।

और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और ओ जब जुल्फे उड़ते हैं तो कुमारियों का दिल क्यों मचलते हैं, आपको पता है तो जरूर बता देना कि क्यों मचलते हैं, कि कहते हैं कि जब आपका नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल को क्या मुस्कुराता है। जब आपके नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है, है तसल्ली होती है मन को कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। अक्सर हम अपनी रात यूं बर्बाद करती है, अक्सर हम अपनी रात क्यों बर्बाद करती है, बैठ के किसी कोने में उनको याद करती है, उनके वापिस आने की उम्मीद तो छोड़ दी कब की, फिर भी ना जाने क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करती है। हम चलते हैं नाइटिंगेल, लता जी का एक सॉन्ग है जो एक हिट फिल्म था, फिल्म के नाम है बॉबी।

लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी। उस तरह हमारी पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।

और अफसरे कोई लड़की इस हाल में कोई जरूर कभी 16 वर्ष के थे दोस्तों। फिल्म के नाम है बॉबी और ये यानी कि एक हिट सुपर हिट फिल्म थी ऋषि कपूर का दोस्तों और डिंपल का। हम कहते हैं कि किस्मत के लकीरों पर, किस्मत के लकीरों पर यकीन, किस्मत के लकीरों पर यकीन करना छोड़ दिया है जॉनी, किस्मत के लकीरों पर और यकीन कर दिया है जॉनी। जब इंसान बदल सकता है तो ये लकीरें क्यों नहीं, ये लकीरें क्यों नहीं दोस्तों। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता। दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। कोई देखे तो हमारी बेबसी, कोई देखे तो हमारी बेबसी। हम सभी के हो चाहते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। हम सबको हो जाते हैं पर हमारा कोई नहीं होता है दोस्तों। कि कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना। कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना। निभा सको तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी के जिंदगी बर्बाद मत करना। फूल तुम्हें हम भेजाए हैं यहाँ रेडियो फाहुन के माध्यम से और ये है मैथ मुकेश और लता जी का ये सुपर हिट सॉन्ग।

और फूल भी, और भेजा है खत में, और फूल नहीं वो किसी का दिल है दोस्तों, यानी कि फूल के खुशबू में किसी के दिल भी चला जाता है कि कहते हैं ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटे शायद ना आ सकूं, ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटते शायद ना आ सकूं, हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो खबर कर देना सारी की सारी, सारी की सारी ले जाऊंगा मैं, यानी कि तुम्हारा गम। तो दोस्त इसी को कहते हैं दोस्तों कि बहुत रोया है दिल, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, कुछ ना मिला रूप से भी फरियाद करके, वो कह गए मैं ना दूंगी साथ आपका, कोई पूछे उन्हें क्या मिला हमें बर्बाद करके। हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, वो है फिल्म के नाम है लव स्टोरी जिसमें, और वो है कुमार गौरव यंती इसमें काम किया है, और ये भी एक बहुत सुपर हिट फिल्म थी दोस्तों। ये गीत हम आप लोग को जरूर सुनाएंगे।

और मैं भी आई आई आई लव स्टोरी फिल्म का नाम है 1981 का। और जितने लोग इस समय पे 18-19 बरिश के थे दोस्तों, तो फुल हाउस के साथ हमारा सूरीनाम का जो जितना फिल्म हाउस थे वो एकदम फुल थे दोस्तों। इस फिल्म भी हम भी कई बार जाकर देखे है लेकिन मन नहीं भरा। एक मोहब्बत भरी प्यार का ये फिल्म है और हम हसरत करते हैं जिनकी वो तो छुप गई कहीं। अगर तुम साथ दे तो नजर आ जाएंगी वो कहीं कि अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। उसकी खुशी ढूंढते रहते तो बदनाम हो गई हम। बदल पे छलके हैं और नैतिकल लता जी का ये एक जोंग है दोस्तों। आ मिलकर सुना जाए जिसमें अनिल ऋषि मीनाक्षी काम किए हैं। और इस फिल्म का हम खोजते हैं ये कौन फिल्म का गीत है। अगर जो हमें मालूम हो गया दोस्तों तो आपको हम जरूर बता देंगे। लेकिन और इस फिल्म में काम किया है मीनाक्षी काम किया है दोस्तों। और आओ मिलकर सुना जाए इस गीत को।

और बादल पे छलके आ, और इसमें अनिल कपूर, ऋषि मीनाक्षी सोनम, नाइटिंगेल लता जी और श्रीस का ये गाया यानी कि फिल्म है और बदल पे छलके है सॉन्ग का नाम है। और दोस्तों हम चलते हैं कुछ शायर और शायरी के ओर और कहते हैं कि पलकों की हिफाजत होती है, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल के अमानत होती है, हाय और हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। और कितने लोग हैं जो अलिंस्तांद है दोस्तों, जो अकेले रहते हैं, अकेलापन है, मेंस द अलिंस है फॉर द मेंस हैपिक ही नामलिक अनपार मोशाइस एंड हद रोम कि ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना हम हैं किसी के ना हमारा है कोई। कहते हैं चेहरे के हंसी से हर गम छुपाऊं, बहुत कुछ बोला पर कुछ ना बताऊं, कुछ ना रूठो कभी पर सबको मनाओ, खुद ना रूठो पर किसी को पर सबको मनाओ, ये राज है जिंदगी का बस जीते जाओ। और कभी कभी प्यार करते हैं तुम किसी से लेकिन वो अमानत किसी और का है।

दोस्तों तू प्यार है और किसी और का और तुझसे चाहता है कोई और है कि कहते हैं प्यार का बदला कभी चुका नहीं सकेंगे, प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह कर भी आपको भुला ना सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़ कर कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। और जो लोग अकेले रहते हैं वो कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरी महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है बस अलवास नया लाया हूँ। ऐ काश दूर रहने वाले ठड़को एक बात, तुहके एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरा ख्याल आए तो अपना ख्याल जरूर रखना।

ये तो सही बात है दोस्तों, जैसा मेरा प्यार है वैसा हमारा गुस्सा वो भी है दोस्तों। आपको यहाँ गीत में बताए गए है कि कहते हैं किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आ जाओ। और कहते यार करते हैं तुम्हें तन्हाई में, याद करते हैं तुम्हें तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में, हमें मत ढूंढना दुनिया के बीच में, हम मिलेंगे तुम्हें तो तुम्हारी ही परछाई में। तो दोस्तों ये कुछ शायरी और शायरी आप लोग के लिए हम चलाएं।

और दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते कि दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे, आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 MHz और नहीं कनाल 8 पर, और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं, हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में, पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत वसलमो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

खूबसूरत लग रही है।

फन होम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन अयुमान पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था, जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछें भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ धन धान्य दूध दही सवारी ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ विजय, बायां भाग कहा सुनी झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

तालु का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालु का दायां भाग रोग से परेशानी, तालु का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले। कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले। कंठ का ऊपरी भाग स्वर्ण माल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफ़रत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग, दुर्भाग्य है, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं के से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के क्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्या को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है।

पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 मास से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 मास से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10, 11, 12, 13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और यहाँ से कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश हम सब लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। हमारे कोलेखा साथी मनीषा जी जो अपना एंट्री डालते हैं, फिर बबली जी, फिर पनेल के पीछे बैठे हुए हमारे शांता खेमाई जी।
1: गौतम बुद्ध, इनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए और परम ज्ञान की खोज में चले गए। आइए आज हम आपको सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने के सफर के बारे में बताते हैं।
2: हर दिन सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि कोई भी दिन वापस लौट कर नहीं आता। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
3: मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको हार्दिक से स्वागत है आज इस ज्योति का प्रकाश के प्रांगण में, उनके प्रोग्राम में। और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरे राम राम प्रणाम होवे।
0: सुनने वालों, अभी हमारे कोलेखा साथी अनुराधा जी भी और हमारे साथ देने वाले हैं, और कोलेखा साथी हमारे मास्टर जी जो भारत से भी जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हम वही गीत की ओर बढ़ेंगे कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। सुनने वालों, हमारे कोलेखा साथी अनुराधा जी इस समय जुड़ गए हैं और अनुराधा जी से निवेदन करूंगा कि आज का विषय जो है उस अंतर्गत में कुछ संदेश रखने को।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। संजय जी, आज मैं सभी को गौतम बुद्ध के बारे में बताना चाहूंगी और बौद्ध धर्म से उनका क्या नाता था, वे कौन थे। बौद्ध धर्म का इतिहास गौतम बुद्ध से आरंभ होता है। अहिंसा के मार्ग को दिखाने वाले भगवान बुद्ध दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों में शेष माने जाते हैं। उन्हीं की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। बौद्ध धर्म 2600 साल पहले भारत में किसी के जीवन को बढ़ाने में सहायक जीवन जीने के तरीके के रूप में उभरा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में यह सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। बुद्ध को शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर हुई थी, जिनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के शाही वंश में हुआ था, रॉयल फैमिली में हुआ था, जिसने लुम्बिनी में भारत नेपाल सीमा पर कपिल वस्तु पर शासन किया था। राजा शुद्धोधन इनके पिता थे और उनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन गौतमी ने किया। राजा शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक ही दोहरी भविष्यवाणी की कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र आदमी, यानी कि एक महान सन्यासी बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। गौतम गोत में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए जाते थे। सिद्धार्थ का नाम बहुत ही सुंदर नाम है। उनका मन बचपन से ही बड़ा करुणा और दया का स्रोत्र था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की ही अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हारना और किसी का दुखी होना उनसे देखा ही नहीं जाता था। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की इन्होंने सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा भी की। ये भी कहानी बहुत उनके बारे में बताती है कि कितने दयालु इंसान थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की चारों तरफ पहरेदार बैठा दिए कि जिससे कि सिद्धार्थ राजमहल से बाहर ना जा सके। उनकी सब ऐशो आराम, उनकी सब सुविधा के लिए जो उनको चाहिए था उनके लिए उस राजमहल में राजा ने सब कुछ उनको दिया, यह सोचकर कि सिद्धार्थ यहाँ खुश रहेगा और बड़े होकर राजा बनेगा और बाहर की दुनिया नहीं देखेगा तो फिर वो संन्यास का उसको पता ही नहीं चलेगा। और उनको पूरी बाहरी दुनिया से सिद्धार्थ काफी वर्षों तक दूर रहे। परंतु इतने प्रयासों के बाद भी एक दिन सिद्धार्थ ने राजमहल से बाहर कदम उठाया तो अपने राज्य कपिल वस्तियों की गलियों में उनकी दृष्टि चार ऐसे दृश्यों पर पड़ी जिनको देखकर उनका मन पिघल गया। उन्होंने एक पहला दृश्य एक वृद्ध एक बूढ़े विकलांग व्यक्ति का देखा, एक रोगी जो एक बीमार इंसान था उसका देखा, फिर एक पार्थिव शरीर यानी कि एक मरे हुए इंसान की उनका शरीर देखा और अंत में एक साधु देखा। इन चार दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सब देखकर उनका मन बहुत विचलित हो गया और वो सोचने लगे मैं क्या करूं, मेरे को इन चीजों से इसका मेरे को सत्य जानना है, सच्चाई जाननी है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना धनवान जीवन और अपने छोटे से बालक राहुल और धर्म पत्नी यशोधरा को त्याग कर एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म बुढ़ापा दर्द बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवाल और सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चल गए। संजय जी, हमने देखा कि बुद्धा जी की कितनी उनमें तड़प थी सत्य की खोज जानने के लिए, तो मैं आगे उनके बारे में और बताऊं क्यों ना एक गीत सुना जाए और फिर आगे बढ़ती हूँ।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने गीत को सुने और हमारे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं हमारे कोलई खास साथी अनुराधा जी, जो आज का टॉपिक रखा गया है कि गौतम बुद्ध, और उस अंतर्गत में अभी भी और भी संदेश रखने वाले। तो अनुराधा जी, आप अपना संदेश को आगे जारी कीजिए।
1: तो आगे पता करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन में आगे क्या हुआ। तो वर्षों की कठोर साधना के पश्चात एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे उनकी अविजय नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी कि उन्हें पूर्ण ज्ञान या बोधि की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ। बोध यानी कि ज्ञान। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान। बोधि वृक्ष का अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ही 6 साल तक तपस्या की थी। एक दिन उन्होंने 6वें वर्ष में पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त किया। तब से बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक बन गया है। गौतम बुद्ध केवल 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ गांव में बनारस शहर के पास दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन इस घटना को दिया गया नाम है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्यौहार है। ये बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। भगवान बुद्ध का कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो हमें बुद्ध जी के, गौतम बुद्ध के जीवन से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और बहुत सारी कहानियां हैं। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे होंगे। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदता। उसने ऐसा करा तो ना उसको पानी की प्राप्ति हुई और ना उसने अपना विकार में कष्ट सहा, उसने इतने गड्ढे खोदी। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। इस कहानी से पता चलता है कि धैर्य रखना कितना जरूरी होता है। संजय जी, क्यों ना एक गीत प्रस्तुत किया जाए और मैं थोड़ा बुद्धा जी की और एक कहानी के साथ फिर से पेश हम करेंगे अपने सुनने वालों को।

0: ये सुंदर सा गीत था हम सुने, और सुनने वालों सोनू निगम के आवाज़ में हम ये गीत को सुने। और हमारे कोलेग खास साथी अनुराधा जी, उनसे आग्रह करूँगा कि अपना और संदेश जो रख रहे हैं और हमें आगे सुनाइए।
1: तो संजय जी, सुनने वालों को सभी को गौतम बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो एक और अन्य कहानी है जो मैं सुनाना चाहूँगी। और एक बार एक दिन गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, आप हमेशा प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ मैंने झरने से पानी पिया है। तो बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? तो आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था और मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। तो बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे से ही खड़े होना पड़ता है। जो सत्संग कथा या प्रवचन होता है उसमें कहने वाला हमेशा ऊपर बैठता है, उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। ये सुनकर उनका शिष्य ने बुद्ध जी के पैर छू लिए और कहा कि आपने हमें कितनी ज्ञान की बातें बताई हैं। तो हम सबको भी ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई अच्छी

मन ही सब कुछ है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही मन बन जाते हैं। इसीलिए नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा सकारात्मक रहें। गुस्सा बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने किसी और पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ रखा है। हम गुस्से में दूसरे से ज्यादा खुद का नुकसान करते हैं। उन्होंने कहा कि शक लोगों को अलग कर देता है। ये दो दोस्तों के बीच, प्रेमियों के बीच और किसी भी रिश्ते में दरार डाल दे सकता है। शक करने वाले की आदत जल्दी से जल्दी छोड़ दें। और सुनने में ये मिलता है कि बीती समय और भविष्य का विचार ना करें, जो बीत गया उसका दुख ना मनाएं, और भविष्य की चिंता करने से मन अशांत होता है। हमें सिर्फ वर्तमान यानी कि प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध जी ने हमें बताया कि सुख दुख अस्थाई है। अगर हम दुख के अंधेरे में हैं तो हमें सुख की रोशनी की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी हमें सिखाया कि दूसरों से ईर्ष्या ना करें, हम जलसी ना करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलती है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद लें और उसमें खुश रहें। उन्होंने बुद्ध जी ने हमें बताया, हम जो कुछ भी हैं वह हमने अभी तक जो कुछ सोचा है उसका परिणाम है। जो लोग गलत नियत के साथ काम करते हैं उन्हें अंत में दुखी मिलते हैं। अच्छे काम करने वाले हमेशा सुखी और शांत रहते हैं। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आपको ये सब आप अपने जीवन में उतारेंगे ये सब बातें और अपना जीवन अच्छा बनाएंगे। तो संजय जी, एक चलिए एक गीत सुना जाए।

0: सुनने वालों, ये कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीषा जी, जो जा करके हम सबके कुछ और संदेश रखने वाले हैं। मनीषा जी, ये बुद्ध और देवता, उस अंतर्गत में आप क्या रखने वाले हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में कम जानकारी है, क्या उसके बारे में आप कुछ और हमें सुनाइए।
1: भगवान बुद्ध सबको एक दृष्टि से देखते थे, उन्होंने कभी ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, इस तरह का भेदभाव ना कभी अपने मन में रखा और ना ही हम उनकी शिक्षाओं में, उनकी कहानियों में ऐसा सुनते हैं। एक बहुत प्रचलित कहानी है वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के बारे में। हम सबको पता है कि नगरवधु कितना मान सम्मान उस समय में होता था, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह माना जाता था, मनोरंजन का साधन, लोग हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन भगवान बुद्ध उसको भी अपने शरणागत लेकर उसको भी बुद्ध भिक्षुणी बनाने की जो कहानी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक समय भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वैशाली के नगर के पास से भ्रमण करते हुए निकले। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जाकर वैशाली के नगर में भ्रमण करें और भिक्षाटन करके लाएं। उनका एक भिक्षु अनजाने में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली, जो कि परम सुंदरी परम रूपवान थी, उसके द्वार पर जाकर एक भिक्षु ने याचना की, माता भिक्षाम देहि। आम्रपाली यूं तो रोज कितने ही राजाओं, राजकुमारों, नगर के सेठों को देखती थी, उनका मनोरंजन करती थी। आज पहली बार उसने एक भिक्षु को अपने दरवाजे पर देखा तो उसे सहज ही एक आकर्षण प्रतीत हुआ। उसने उस भिक्षु को बुलाया और कहा, मैं आपको भिक्षा अवश्य दूंगी, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि चौमासा शुरू होने वाला है, अर्थात 4 मास की वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है, सभी भिक्षुक किसी न किसी घर में आश्रय लेंगे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे घर में आश्रय ले लें। शिष्य बोला कि मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना, उनकी अनुमति के बिना आपके घर में नहीं रुक सकता, मैं उनसे अनुमति लेकर आपको बताता हूँ। वह भिक्षुक जब बाहर आया, अपने साथ के अन्य भिक्षुकों को ये बताया कि उसे आम्रपाली ने अपने घर चौमासा बिताने के लिए आमंत्रित किया है, तो उसके साथ के सभी भिक्षुकगणों को कुछ तो ईर्ष्या हुई, उन्होंने जाकर जल्दी जल्दी भगवान बुद्ध के समीप और उस भिक्षुक के बारे में कुछ अनर्गल बातें कही कि आपका वह शिष्य तो वैशाली की नगरवधु के साथ चौमासे में वास करेगा, आप उसको इसकी अनुमति मत देना। भगवान बुद्ध बोले, आने दो, देखते हैं कैसी अनुमति मांगता है। तब तक बेचारा वो भिक्षुक आया और उसने भगवान के चरणों में अपना माथा टेक के उनसे अनुमति मांगी कि हे प्रभु, ऐसे ऐसे वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने मुझे चौमासा व्यतीत करने के लिए अपने घर में आश्रय देने का आग्रह किया है, परंतु आपकी अनुमति के बिना मैं वहां जाके नहीं रह पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने बगैर सोचे उसको कहा कि हाँ जाओ, आप आराम से चौमासा व्यतीत करके 4 मास बाद लौट कर आना। भगवान बुद्ध के बाकी शिष्यों को लगा कि ये भगवान ने गलत किया कि ऐसे कोई बौद्ध भिक्षु किसी नगरवधु के घर कैसे रह सकता है, इससे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। भगवान ने कहा, आप धैर्य रखें, अगर इसमें ज्ञान की प्रधानता होगी, त्याग की प्रधानता होगी, तो वह सहज आकर्षण या अन्य किसी वस्तु से आकर्षित ना होकर अपने स्वयं के ज्ञान और त्याग के प्रभाव से आम्रपाली का हृदय भी परिवर्तित करेगा, और अगर ऐसा ना हो पाया तो दोबारा समाज और दुनिया के आकर्षणों में बंधकर अपने जीवन गति को यही विराम लगाएगा। तो आम्रपाली की कथा बीच में रोककर छोटा सा अल्प विराम लेते हैं और मैं प्रार्थना करूंगी संजय जी से कि एक मधुर गीत के साथ इस चर्चा को थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ाएं।
0: जरूर मनीषा जी, चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं हम सब, पर कार्यक्रम में न्यूज़ और कमर्शियल, हम उस ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और कार्यक्रम में बुद्ध देवता के अंतर्गत में और हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत से करगोपुर से, जो यहाँ से बहुत दूर है, और वहाँ जब ये कार्यक्रम यहाँ पर भोलंत और भारत से 5 घंटा का और समय का भी फर्क होता है, फिर भी हमारे आचार्य जी जो हमारे साथ हर बार सहयोग देते आए हैं, तो आचार्य जी आपको स्वागत किया जाता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के ओर से।
2: जी संजय
0: आपका स्वागत किया जाता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की ओर से। और आज का विषय जो रखा गया है गौतम बुद्ध के अंतर्गत, तो कुछ हमें संदेश सुनाइए।
2: माना जाता है कि भगवान बुद्ध भगवान के विष्णु के नौवे अवतार के रूप में जन्म हुआ था। श्रीलंका एवं अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इस दिन को वैसाख उत्सव के रूप में मनाते हैं। वैसाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध अनुयायी अपने घरों में दीपक जलाते हैं और फूलों से अपने घरों को सजाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में आओ, सच्चे राह पर आओ, ऐसी धारणा को जो प्रचारित करते हुए भगवान बुद्ध पूरे विश्व में विख्यात हुए। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे भारत देश के ही भगवान, हमारे भगवान बुद्ध पूरे विश्व में अपना परचम लहराए, सनातन धर्म का परचम लहराए। जी संजय जी,
0: आचार्य जी, बात यह है कि वहां भी एक बुद्ध का और स्थान भी कहलाते हैं ना, बुद्ध नगरी
2: जी,
0: तो उसके बारे में क्या, क्योंकि हमारे सुनने वालों भी भारत जाए तो कुछ जगहें हम चाहते हैं घूमने के लिए, तो बुद्ध नगरी वो कहाँ और कैसे जा सकते हैं?
2: संजय जी, मैं आपको बताते हुए मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ फिर पुनः, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ आप लोग आए हैं खरगुपुर, ये भारत में उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के 30 किलोमीटर दूरी पर खरगुपुर नगरी है और खरगुपुर नगरी से मात्र 14 किलोमीटर दूरी पर भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थल है। वह पीपल का वृक्ष आज भी है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आप आएंगे या मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके रेडियो के माध्यम से मैं लोगों को निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि एक बार जरूर भगवान बुद्ध की नगरी में आए और वह उनका हर स्थान देखे जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ पर उनको जो है उन्होंने ध्यान लगाया। वहाँ हमारे यहाँ विपसेना केंद्र है जहाँ पर भगवान बुद्ध के द्वारा, भगवान बुद्ध के अनुयायी के द्वारा वहाँ पर ध्यान लगाया जाता है। वहीं पे भगवान बुद्ध का एक स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण का मंदिर है। भगवान बुद्ध का एक धम्म स्थान है, एक मंगलमय स्थान है। तमाम प्रकार के यहाँ पर जो है और विदेशियों के लिए रहने के लिए अच्छे अच्छे होटल हैं और भगवान बुद्ध की महिमा का यहाँ वर्णन सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, क्योंकि उन्होंने जातिवाद पर कुठाराघात किया था। उन्होंने जातिवाद मिटाया, समाज में समरसता, सामाजिकता और उन्होंने समता का प्रचार किया। उन्होंने मानव मानव में भेद नहीं बताया, उन्होंने कहा मानव मानव में प्रेम होना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म बताया। उन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांस शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के लिए हमें शाकाहारी होना चाहिए, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। और इस संदेश के माध्यम से उनके बहुत से अनुयायी, सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, भगवान बुद्ध को भगवान की तरह मानते हुए उनकी पूजन करते हैं। उन्हीं के नाम से है सनातन धर्म के लोग स्नान दान जप भजन कीर्तन करते हैं उसी कार्यक्रम के दौरान। जी संजय
0: आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है जिस प्रकार से आपने संदेश हम सब के लिए रख दिए है। हम एक गीत के ओर बढ़ेंगे और कार्यक्रम को आगे अभी हम सब लेकर पढ़ने वाले हैं।

तो भाइयों बहनों, उत्सुकता तो होगी आपको, क्या हुआ आम्रपाली का? महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने क्या निर्णय दिया? तो हुआ यूं कि भगवान बुद्ध को अपने शिष्य को दिए हुए ज्ञान और उसके तप पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने सभी के विरुद्ध जाकर अपने शिष्य को यह अनुमति दी कि वह जाकर नगरवधु आम्रपाली के साथ चौमासा व्यतीत करें और बाकी सारे शिष्य जहाँ जहाँ जिस जिस घर में आश्रय मिले जाकर चौमासे का, वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करें। चार मास बीत जाने के बाद देखिए सारे भिक्षुक एक एक करके लौटकर अपने गुरु भगवान बुद्ध के पास आए और आकर उपहास स्वरूप बोले कि हे प्रभु, आपका प्रिय शिष्य नगरवधु के घर से आया। सबका इतना कहना ही था कि पीछे से भगवान बुद्ध का वह प्रिय शिष्य आया और उसके पीछे पीछे सोचे कौन आया, उसके पीछे आई वह नगरवधु आम्रपाली, जिसके पीछे समस्त नगर समस्त उपहारों को लेकर हमेशा खड़ा रहता था, जिस आम्रपाली की सुंदरता से मोहित होकर राजा बिंबिसार कितनी बार वैशाली पर आक्रमण कर चुके थे, परंतु वह नगरवधु भगवान बुद्ध के उस शिष्य को अपने रूप आकर्षण में नहीं बांध पाई, बल्कि उस शिष्य के ज्ञान और तप से सम्मोहित होकर उसको यह समझ में आया कि यह शारीरिक आकर्षण, भौतिकतावाद किसी काम नहीं आता, काम आता है तो सिर्फ अंतर्मन की शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति। तो अब उसका उद्देश्य जीवन का परम उद्देश्य बन चुका था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे अपनी शरणागत लीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हेतु अग्रसर कीजिए। भगवान बुद्ध ने बगैर किसी पक्षपात के उसको अपनी शिष्या स्वीकार किया और वह नगरवधु आम्रपाली आगे भगवान बुद्ध के साथ रहकर एक बौद्ध भिक्षुणी बनी और तपस्या करके उसने भी ज्ञान की प्राप्ति के अपने उद्देश्य को सफल किया। तो इस तरह से भाई और बहनों, हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ना किसी को बुरा मानते थे, ना किसी को भला मानते थे, ना किसी को ऊंचा, ना किसी को नीचा मानते थे। सबको समान दृष्टि से देखना, सबको समान अवसर प्रदान करना, यही उन्होंने अपने जीवन में अपने कर्मों से हम सबको सिखाया। तो उनके जीवन के इन शिक्षाओं को हम आत्मसात करें और अपने जीवन को धन्य करें।

जी मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से आपने सुनी ये सुंदर सा बुद्ध वंदना, और उससे पहले आपने श्रवण की है मनीषा जी से, अनुराधा जी से, और संजय जी और एक महाराज जो भारत जी से, भारत देश से जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए था, और बुद्ध महाराज के बारे में बात की, उनके जन्म कथा यहाँ से हम सबको श्रवण किया। और तो यहाँ से सोचती हूँ कि यहाँ आप लोग को भी बता दो दच भाषा में भी।